0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज

0: वर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हों। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमरीका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath's temple in Gujarat on the 11th of May to mark 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president Rajendra Prasad in 1951. The Prime Minister today wrote an article in a national daily paper and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend two important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath a symbol of India's civilizational strength and resilience. He said the temple's journey represents a movement from destruction to creation and shows how faith and culture can survive even after repeated attacks and hardships. The Prime Minister remembered the role of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, in rebuilding the temple after independence. Mr. Modi said Patel had strongly believed that the reconstruction of Somnath was a national duty. The West Bengal BJP Legislature Party will meet in Kolkata this afternoon to elect its leader. The party's central observer and Union Home Minister Amit Shah will be present in the meeting. The BJP registered a historic victory in the just-held assembly elections, ending the TMC's 15-year rule in the state. The swearing-in ceremony of West Bengal's first BJP government will be held at Brigade Parade Ground in Kolkata tomorrow. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. In a statement,

घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड की 100.1 MHz पर, और आप हमें सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।

बात करते हैं आकाशवाणी के खूबसूरत सफर यानी कि 90 वर्ष पूरा होने के सफर जून 2026 आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है और दोस्तों ये एक मील का पत्थर है। आज इस उपलक्ष्य में 8 मई को एक मैराथन का आयोजन किया गया और ये मैराथन दिल्ली के आकाशवाणी के परिसर से आरंभ हुई। इसमें आकाशवाणी के वरिष्ठ अफसरों सहित कई युवाओं और स्टाफ ने भी अपना भाग लिया और हिस्सा लिया। अत्यंत उत्साह के साथ मैराथन संपन्न हुई। तो हम आपके लिए आकाशवाणी से जुड़ी कई जानकारियां रोज लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ यानी राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण आकाशवाणी से।

0: अभी आप सुन रही थी बातों बातों फिल्म से गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। और दोस्तों आज बहुत सारे दिवस हैं। पहले बात करते हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस की। आज के दिन हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है ताकि इस अनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, रोकथाम को बढ़ावा दिया जा सके और इससे पीड़ित लोगों के लिए यानी समान देखभाल और कार्रवाई की जा सके। इस साल की थीम है अब और छिपा नहीं, अनदेखे लोगों की खोज। अनदेखे लोगों का समर्थन, शीघ्र निदान में सुधार और उपेक्षित रोगियों की सहायता पर केंद्रित है। यह अभियान प्रारंभिक जांच और निदान की कमी को दूर करता है। तो आइए सुनते हैं आज एक विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर डॉक्टर रोहित कपूर से रश्मि कुकरेती की बातचीत।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों ये कार्यक्रम है घर आंगन, मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती। और आज है 8 मई और आज का दिन एक विशेष दिन है। आज है विश्व थैलेसीमिया दिवस और हम आपको बता दें कि थैलेसीमिया खून से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है और ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंचती है। तो ये सब बातें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर रोहित कपूर। डॉक्टर रोहित कपूर बच्चों के रक्त संबंधी कैंसर विशेषज्ञ हैं, यानी कि पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर रोहित कपूर आपका एफएम गोल्ड के स्टूडियो में।
2: नमस्कार। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एक बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है। इसमें बेसिकली बच्चे होते हैं उनके अंदर ब्लड जो होता है वो बनता नहीं है, तो इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन जो कि कम होता है बच्चों में। सो ऐसे में बच्चों को रेपिटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। सो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर रक्त न बनने की वजह से जो बच्चे होते हैं उजले उजले लगते हैं, कमजोर होते हैं, खाना पीना में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। सो बच्चों की तीली बढ़ने लगती है क्योंकि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो वहां पे एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस करने लगती हैं। सो जो थैलेसीमिया है एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कुछ कम्युनिटीज के अंदर कॉमन है, जिनके अंदर जो ब्लड हीमोग्लोबिन होता है वो सही से उत्पन्न नहीं होता है और बच्चे कमजोर दिखते हैं और जनरली 6 मंथ्स की एज में डिटेक्ट होता है।
1: डॉक्टर साहब क्या कारण होते हैं ये थैलेसीमिया जब बच्चों को हो जाता है, और अगर बच्चे को ये थैलेसीमिया है तो माँ बाप को कब पता चलता है, क्या लक्षण उनको दिखाई देते हैं बच्चों में?
2: जो थैलेसीमिया है बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इंडिया की सर्टेन कम्युनिटीज है जिसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉमन है, जैसे कि लोहाना, सिंधीज, पंजाबीज, भानुशालीज, ये सारी कम्युनिटीज के अंदर जनरली जीन जो होता है हीमोग्लोबिन का कैरियर्स होते हैं, जिनके अंदर अगर शादी होती है सेम जेनेटिक कैरियर्स में तो ये डिसीज उत्पन्न हो सकती है, जिसे थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। जो थैलेसीमिया मेजर होता है उसकी जो उत्पन्न होता है वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसमें बीटा ग्लोबिन जीन या अल्फा ग्लोबिन जीन की म्यूटेशन हो सकती है। सो अब जो थैलेसीमिया है उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है बर्थ पे तो बिल्कुल ठीक लगता है, पर इवेंचुअली जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो बहुत कमजोर सा होता है, खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं लेता और बहुत पेल सा लगता है बच्चा, उसका स्प्लीन बढ़ने लगता है, बहुत इरिटेबल होता है, काफी लथार्जिक हो जाता है बच्चा और जैसे कि कहते हैं रेगुलर बच्चों की तरह उसकी ग्रोथ नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब थैलेसीमिया मेजर की आपने बात की, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर में क्या फर्क होता है?
2: थैलेसीमिया मेजर होता है उसके अंदर जो दोनों जीन्स होते हैं जो मदर और फादर से आए हुए होते हैं वो दोनों म्यूटेटेड होते हैं, जो बीटा ग्लोबिन चेन जीन होता है, और थैलेसीमिया माइनर जैसे थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं उसमें जनरली एक जीन नॉर्मल होता है। इन लोगों का जो हीमोग्लोबिन होता है थोड़ा नॉर्मल हीमोग्लोबिन से कम होता है, बट ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं और इनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती। इनके बीच में एक थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी होता है, बट उसके अंदर जनरली हम हाइड्रोक्सीयूरिया नाम की दवाई देते हैं, जब वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो जाते हैं देन वी ट्रीट देम एज थैलेसीमिया मेजर ओनली। और एक अल्फा थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया जनरली इतनी इंपॉर्टेंट डिसीज नहीं है और इसके अंदर हमें इन यूट्रो एक्चुअली बच्चों की डेथ हो जाती है अगर 4 जीन म्यूटेटेड हो, जनरली माइनर अल्फा थैलेसीमिया नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं।
1: यानी कि थैलेसीमिया माइनर दवाइयों से भी ठीक हो जाता है?
2: यस।
1: थैलेसीमिया मेजर में आप बता रहे हैं कि बार बार खून देने की जरूरत पड़ती है, पर उसमें भी जीन थेरेपी अगर की जाए या स्टेम सेल से अगर उसकी इलाज किया तो उसमें भी अपार संभावनाएं हैं।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये कब तक पता लगने की संभावना होती है कि इस प्रकार के जो लक्षण समझ में आने लग जाते हैं?
2: जो इस तरह के लक्षण है अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज में पता चलने लगते हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन जब बच्चा जिसके साथ पैदा होता है वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है जैसे

0: जैसे जैसे जैसे कम होता है और एडल्ट हीमोग्लोबिन आता है तो ये डिसीज दिखने लगती है, क्योंकि एडल्ट हीमोग्लोबिन की चेन्स को डेवलप होने में इस कंडीशन में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं उन्हें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। जो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे इजिली पता चल सकता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं। कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी इन बच्चों को होता है डेवलप, तो इन दो कंडीशन को हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वर्सेस थैलेसीमिया, जो कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें पता चल सकती है।
1: अगर आपके पास कोई माँ बाप इस प्रकार के बच्चे के साथ आते हैं जिसमें कि उन्हें लग रहा है कि ये सारे लक्षण है, तो आप लोगों का जो इलाज रहता है या जो सलाह रहती है क्या रहती है?
0: जो थैलेसीमिया है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सारे ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो बच्चा है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका मेंटल ग्रोथ, उसका फिजिकल ग्रोथ, उसका जो जनरल डेवलपमेंट होता है, जैसे माइलस्टोन होता है, जैसे बच्चे जब भागते हैं कूदते हैं खेलते हैं तो वो थोड़ा डिले होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है बच्चे को, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। तो ऐसे में हम जो मदर फादर को समझाते हैं कि जो बच्चा है उसे हीमोग्लोबिन जो बढ़ नहीं रहा है उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होता है एवरी 28 डेज बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है जिससे उनकी ग्रोथ सही हो, क्योंकि उनको ब्लड सर्कुलेशन से ऑक्सीजन डिलीवरी होगी तभी उनकी ग्रोथ होगी, तभी उनका जो इरिटेबिलिटी होगी वो कम होगी, उनकी जो लेथार्जी होगी कम होगी, जो पैलर है जो बच्चे लेथार्जी के हैं वो इम्प्रूवमेंट होगा उनके क्लिनिकल स्टेटस में।
1: कोई ऐसी दवाइयां नहीं है कि है वो खून चढ़ाने की जरूरत ना पड़े, केवल दवाइयों से ही सही हो जाए ऐसा नहीं हो सकता?
0: कुछ दवाइयां डेवलप हुई हैं जो कि बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर यूज करी गई है, बट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज ही हैं। तो वो दवाई दी जाती है बच्चे को और देखा जाता है कितना हीमोग्लोबिन उसका बढ़ रहा है आफ्टर यू नो सर्टेन डोजेस। अगर उसे हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता तो उसकी डोज इंक्रीज करके देखते हैं कि हायर डोज पे हीमोग्लोबिन बढ़ता है या नहीं। जो बेसिकली ट्रांसफ्यूजन की नीड जो होती है वो दवाई कम नहीं करती, पर ट्रांसफ्यूजन की जो ड्यूरेशन होती है वो बढ़ा देती है। मतलब अगर 4 हफ्ते में ट्रांसफ्यूजन मिल रहा है तो वो 8 हफ्ते में मिलने लगेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन लंबे समय तक सर्कुलेशन में रहेगा और मेंटेन रहेगा उस दवाई से। बट इसका जो इलाज है वो क्यूरेटिव इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बाहर जो इलाज किया जाता है वो जीन थेरेपी है, वो एक जो जीन खराब है उस जीन को इंट्रोड्यूस बच्चे की उसमें सिस्टम में कराया जाता है जिससे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगे। और ट्रांसप्लांट में ये होता है कि जो हेल्दी बंदा है उसकी स्टेम सेल्स लेकर हम बच्चे के अंदर डालते हैं जिससे कि वो नया ब्लड शुरू से बनाए, इसे हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। और एक और इलाज करा जा सकता है, जो लोग ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी को अफोर्ड नहीं कर पाते तो उन्हें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने पड़ते हैं और आयरन कम करने की दवाइयां साथ के साथ उनको लेनी पड़ती है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आयरन ओवरलोड होने की समस्या होती है और उससे ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं।
1: आप कह रहे हैं कि खून चढ़ाना पड़ता है लेकिन इलाज भी आप बता रहे हैं, तो क्या इसका इलाज मतलब बच्चा थोड़ा बड़ा होता तब किया जाता है कि जब तक वो थोड़ा सा ताकत तो हो शरीर में? कब तक इंतजार करना पड़ता है माँ बाप को कि हमारा बच्चा एक सामान्य जीवन बिता सके?
0: जो बच्चा है एक्चुअली बिल्कुल अपना सामान्य जीवन बिता सकता है। इसका इलाज अगर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से करें तो एज अर्ली पॉसिबल हो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा उतने ज्यादा एंटीबॉडीज ब्लड के अगेंस्ट बनेंगे, उतना ज्यादा आयरन ओवरलोड होगा और उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस, लिवर की कॉम्प्लिकेशंस, एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशन जिसमें ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, हाइट छोटी जाती है बच्चों की, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, मुंह के फेस के चेंजेस, ये सारे चेंजेस डेवलप होने लगते हैं। उससे पहले अगर हम ट्रांसप्लांट करेंगे और स्टेम सेल्स देकर क्योर करेंगे और फुल मैच डोनर अगर हमें मिलता है तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस।
1: तो ये फुल मैच डोनर कौन हो सकता है?
0: जो फुल मैच डोनर होता है वो जनरली मैच सिबलिंग डोनर मतलब भाई या बहन होता है, और डीएनए हमें एचएलए टाइपिंग करनी पड़ती है ऐसे केसेस में, मतलब हमें ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे हम मैच करते हैं कि फुल 12x12 मैच हो, जो अगर डोनर है तो उसके सबसे बेस्ट आउटकम्स हैं। जो मदर एंड फादर हैं जनरली हाफ मैच होते हैं, मतलब जो बच्चा है 50% मदर से जीन्स आते हैं, 50% फादर से जीन्स आते हैं, तो इसे कहते हैं हैप्लोआइडेंटिकल हाफ मैच। तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी करे जा सकते हैं, लीस्ट टॉक्सिसिटी में ट्रांसप्लांट हो सकते हैं और आउटकम्स भी अच्छे हैं, बट एज अर्ली एज 7 ईयर्स ऑफ एज के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे तो बेस्ट आउटकम्स हैं। 7 साल के ऊपर काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं,
1: क्योंकि भाई बहन हो तो सबसे अच्छा।
0: यस, अगर भाई बहन हो तो सबसे अच्छा, अदरवाइज हम जो डीएनए की जो रिपोर्ट होती है अपनी रजिस्ट्री में डालते हैं जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर उस डीएनए के जो पोटेंशियल जो मैच अनरिलेटेड डोनर हो, अगर भाई बहन नहीं है तो उसको हम स्टेम सेल्स को मंगाकर हम बच्चे को दे सकें, ये भी पॉसिबल है।
1: थैलेसीमिया बीमारी ना हो ये क्या रोका जा सकता है? क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं अगर ये पहचान में आ जाए कि वंश में कभी ऐसी बीमारी हुई है, जेनेटिकली ऐसी समस्या कभी रही है या नहीं भी हो, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए डॉक्टर साहब?
0: जो थैलेसीमिया है बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड इसमें जो मेनली जो थैलेसीमिया ट्रेट होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन A2 की कंसंट्रेशन जो होती है 3.5 से ऊपर होती है और वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो इजीली डिटेक्ट हो सकता है कि ये

0: ज्यादा थैलेसीमिक ट्रेट है, तो ये एक बेसिक एचपीएलसी टेस्ट से भी हो सकती है। पर अगर किसी की फैमिली में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है तो हमें जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए देखने के लिए किसी तरीके का थैलेसीमिया सिंड्रोम तो नहीं है, जिससे कि बच्चों के अंदर जो थैलेसीमिया है वो डेवलप ना हो। और क्लोज निट मैरिजेस जैसे कि कॉन्सेंग्नस मैरिजेस होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि दो जीन जिनके अंदर म्यूटेशन है वो क्लस्टर हो सकते हैं, थैलेसीमिया मेजर सिंड्रोम डेवलप हो सकता है ऐसे केसेस में। सो जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग, कॉन्सेंग्नस मैरिज, ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि यूज करे जा सकते हैं देखने के लिए कि फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ थैलेसीमिया ना हो। और अब नई चीजें उत्पन्न हुई हैं जैसे कि एमनियोसिंथेसिस, क्रोनिक विलर सैम्पलिंग, अगर लगता है कि बच्चे को थैलेसीमिया होने के चांसेस हैं तो जो एमनियोसिंथेसिस एक जांच करी जा सकती है जब बच्चा बॉर्न भी नहीं हो, और चेक करा सकते कि उसे थैलेसीमिया सिंड्रोम है या नहीं। एंड अगर नहीं होता तो प्रेगनेंसी कैन बी कंटिन्यूड, अदरवाइज यू नो समटाइम्स इफ इट इज थैलेसीमिया मेजर बिकॉज द चाइल्ड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोलॉन्ग लाइफ चाहिए होंगे, उसे प्री मैरिटल काउंसलिंग बड़ी नेसेसरी होती है चेक करने के लिए कि थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है मदर और फादर, जो कि थैलेसीमिया मेजर सिंड्रोम को दे कैन गिव राइज टू द चाइल्ड।
1: यानी कि इस प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत है, अगर काउंसलिंग हो जाए तो ये बीमारी से बचा जा सकता है।
0: प्रिवेंटिव।
1: डॉक्टर साहब क्या संदेश देंगे ऐसे परिवारों को जिसमें इस प्रकार का जो थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है?
0: जो थैलेसीमिया से ग्रसित फैमिलीज हैं और जिनके बच्चे थैलेसीमिक्स हैं, उनको सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि अगर ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी के लिए उनके पास फंड्स नहीं है तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जो दवाइयां होती है जिससे आयरन कम होता है वो वाली दवाइयां रेगुलरली लें, अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें। कैल्शियम रिच डाइट लेनी पड़ती है, वाइटामिन डी रिच डाइट लेनी पड़ती है, आयरन रिच प्रोडक्ट्स को कम करना पड़ता है क्योंकि ब्लड से ही आयरन ओवरलोड हो जाता है, तो वाइटामिन सी जो होता है उससे आयरन कम होता है बॉडी में, तो ये सारी चीजें लेनी चाहिए और उनको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। साथ के साथ रेगुलर जांचें करानी चाहिए जैसे कि रेगुलर हाइट वेट मेजरमेंट, 7 साल के बाद एको कराना पड़ता है कि हार्ट का कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लिवर का एमआरआई आयरन ओवरलोड देखने के लिए, कार्डिक एमआरआई देखने के लिए कि T2 स्टार एमआरआई देखने के लिए कि हार्ट में ओवरलोड तो नहीं हो रहा आयरन का। 10 साल की उम्र के बाद एंडोक्राइन वर्कअप कराना पड़ेगा क्योंकि वहीं से हाइट और वेट और एंडोक्राइन डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर भी आयरन डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे हाइट वेट थायरॉयड पैराथायरॉयड नाम के जो हार्मोन होते हैं उनकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, बोन मिनरल डेंसिटी की टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो रेगुलरली हर ईयरली कराएं, बायोमार्कर्स हर ईयरली चेक करना होता है, हाइट और वेट रिलेटेड की रेगुलर ग्रोथ हो रही या नहीं हो रही वो रेगुलर चेक करना पड़ता है, 16 इयर्स की एज पे पैराथायरॉयड हार्मोन की टेस्टिंग करनी पड़ती है, और साथ के साथ ग्रोथ चार्ट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और ये भी चेक करना पड़ता है कि रेगुलरली T2 स्टार MRI हो रहा है या नहीं हो रहा, जिससे कि आयरन
1: लगातार डॉक्टर के अपने परामर्श लेते रहें, वो जैसा जैसा कहें उस प्रकार की जांचें करें, उस प्रकार का भोजन लें। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि एक क्या सामान्य जीवन थैलेसीमिया से जो पीड़ित हैं वो बिता सकते हैं?
0: बिल्कुल, जो थैलेसीमिक बच्चे हैं वो बिल्कुल सामान्य जीवन बिता सकते हैं, उन्हें अपनी दवाइयों के साथ बहुत रेगुलर रहना पड़ेगा, उनको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, उनको एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, जो आयरन कंटेनिंग फूड्स हैं उनको कम करना पड़ेगा, मच विटामिन डी, कैल्शियम, जैसे कि बोन उनकी ठीक रहे क्योंकि फेशियल डिफॉर्मिटीज इसके अंदर कॉमन होती है, तो विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रेगुलर एंडोक्राइन वर्कअप, एंडोक्राइन टेस्टिंग, हाइट वेट जो डेवलपमेंट होता है जो प्यूबर्टल डेवलपमेंट होता है उनको मद्देनजर रखकर देखना पड़ेगा कि उनका आयरन चिलेशन अगर जितना बेटर होगा, जितना कंप्लायंट होगा मेडिसिन का, उतनी आयरन ओवरलोडिंग कम होगी और उतना हेल्दी लाइफस्टाइल वो कर पाएंगे। अभी भी भारत के अंदर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक अपकमिंग फील्ड है और आउटकम्स तो इसके अच्छे हैं, बट स्टिल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एक स्ट्रेटेजी है टू मेंटेन एडिक्वेट ग्रोथ, दिस इज व्हाट वी वांट, कि जिससे ऑक्सीजन रेगुलरली पेशेंट को मिलते रहे, उनकी ग्रोथ ठीक रहे।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर रोहित कपूर, आप हमारे स्टूडियो में आए गोल्ड के स्टूडियो में, और विश्व थैलेसीमिया दिवस यानी 8 मई का जो ये दिवस है इस पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार, और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे गोल्ड में बुलाया गया और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हमने चर्चा करी है, और बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी।

दोस्तों, आज है शुक्रवार और आज हमारा खास विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। और अब बात करते हैं कुछ विश्व रेड क्रॉस दिवस की। विश्व रेड क्रॉस का जो संघर्ष आपदाओं और चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने वाले स्वयं सेवकों और कर्मचारियों को सम्मानित करने पर केंद्रित है। आज के दिन मनाए जाने वाला ये दिवस करुणा, निष्पक्षता और मानवीय गरिमा की रक्षा पर बल देता है। इस साल की थीम है मानवता को जीवित रखना है। सुनिए बसेरा फिल्म से गीत, किसे गाए हैं लता मंगेशकर ने।

और अब बात करते हैं कुछ आज के दिवस की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित यह अभियान सरकारों और गैर सरकारी संगठनों निगमों के साथ आता है ताकि सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें कम किया जा सके। इस बार की थीम है एक सुरक्षा बयान दे, सुरक्षित पैदल चलने, साइकिल चलाने, जीवन के लिए सड़कें और गति धीमी करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हर दिन हमारे पास किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जाने के कारण होते हैं, चाहे हम काम, स्कूल या मनोरंजन के लिए घर से निकलें। हालांकि सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वहां पहुंचना। गति धीमी करके हम अपने बच्चों, परिवार और दोस्तों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाते हैं। जब दुनिया इस अभियान को अपनाएगी तो सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और हम बहुत से लोगों की जिंदगी को बचा पाएंगे। खुदासन से गीत लता किशोर की आवाज़।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। बुजुर्गों के संस्कार जीवन का आधार, बड़ों के संस्कार यानी बुजुर्गों से मिले संस्कार ही जीवन का आधार होते हैं। उनके अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन से हमें सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का ज्ञान मिलता है, जो एक सफल जीवन जीने के लिए जरूरी है। बुजुर्गों की सीख हमें एकता और सम्मान के महत्व को भी सिखाती है और बुजुर्गों से हमें संस्कार, अच्छे आचरण, नैतिक मूल्यों और जीवन जीने की कला का ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान हमें सही और गलत के बीच अंतर करने और अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। बुजुर्गों के पास हमारी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें अपनी विरासत से अवगत कराते हैं। बुजुर्गों के जीवन का भरपूर अनुभव होता है। वे अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखकर हमें मार्गदर्शन देते हैं। वो एक दूसरे के साथ प्यार सहयोग से रहने का महत्व समझाते हैं और बुजुर्गों के आशीर्वाद भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनकी दुआएं हमें सफलता और सुख प्रदान करती हैं।

दोस्तों बात करते हैं सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन। भारत में बुजुर्ग आबादी लगातार बढ़ रही है और इस वर्ग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जा रही है। और इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में बुजुर्गों को मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले न्यूनतम आयु वाले वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा के पात्र होंगे। पेंशन राशि सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी, जिससे किसी प्रकार की देरी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहती। ये पेंशन उनके दैनिक खर्चों जैसे भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी।

नंदना बन छुम छनाना पछुम पछुम फटते गाते सिरा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

और दोस्तों, बुजुर्ग मजबूत नींव होते हैं परिवार के। जन ही तो लिखा है हर दीवार पे घर की, और वो नहीं मांगते कोई भी अनमोल उपहार। जन्नत मिल जाती है अगर मिल जाए थोड़ा सा प्यार। बुजुर्ग हर घर की परंपरा की है आधार, और शान में ही रहता है परिवार, करें सदा इनका सम्मान। जी हाँ, हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है, उन्होंने ही तो सिखाया प्यार और रिश्तों को हमेशा अपनाना है। और दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

खड़े खड़े दोस्तों धीरे धीरे नहीं चल रहे हैं। अब हम यही कहना चाहते हैं कि हम यूँ ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए आप रहें खुश, स्वस्थ और मस्त। इसी कामना के साथ सिमरन कौर को दीजिए अनुमति।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज को कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ

सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: developed automatic train protection system that helps prevent collisions by automatically applying brakes in case of unsafe movement. The technology also assists loco pilots in maintaining safe train operations through continuous communication between locomotives, signaling systems and trackside equipment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized on India's burgeoning role as a pillar of global economic stability and highlighted the nation's significant contribution to international prosperity. The minister made these remarks during an address to representatives from various sections of Surinamese society in Suriname.
1: India contributes to the 17% of the total global growth. We help to de-risk the international economy. We help to give more possibilities. We are creating more options. We are today negotiating and concluding more free trade agreements for countries to avail of it. And along with that, we are trying to create a global footprint so that our impact on the international economy and the de-risking of the world is as impactful, as far-reaching as possible.
0: The Enforcement Directorate has registered a case against Gamescraft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs filed against the company and its founders in connection with allegations of cheating and fraud. ED said there are multiple FIRs registered against the company related to suicide committed by the victims. Minister of State for External Affairs Keertivardhan Singh has said India's approach to migration is guided by the core operational principles of protection of migrants, comprehensive governance across the migration life cycle, and strong international cooperation. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका रहता है अब आपको हर रोज इंतजार प्रोग्राम एक ही फिल्म से। जी हाँ दोस्तों, दोपहर की सुनहरी धूप हो, लंबा सफर हो और साथ में पुराने गीतों की मीठी सरगम, तो दिल खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है। आज की इस फिल्म महफिल में हम आपको लेकर चलेंगे 1957 की उस यादगार यात्रा पर। यहाँ सड़कें भी कहानी कहती हैं, हवाएं भी संगीत सुनाती हैं और एक मुसाफिर की मुलाकात प्यार से हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज ये कार्यक्रम एक खास अभिनेता की फिल्म लेकर आया है। गीत आप सुनेंगे और हमेशा की तरह आप पहचान ही जाएंगे कि आज हम कौन सी फिल्म लेकर आए। फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूं कि आज इस सफर में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और हमेशा की तरह आप भी मेरे हम सफर बन सकते हैं अपने संदेशों के जरिए। संदेश भेजने का जो तरीका है आपको पता ही है, लेकिन हमारे जो नए लिसनर्स हैं उनके लिए हम बता दें, हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल आशा जी की आवाज में आपको इस फिल्म का ये खूबसूरत संगीत सुनवाती हूँ। अंदाजा लगा कि जल्दी से जवाब भेज दीजिए, उसके बाद इस सफर में इस फिल्म की ढेर सारी बातें और गीत आप तक पहुँचाऊंगी।

फिलहाल तो आपको सोना नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जिसमें रोमांस भी है, रोमांच भी है, और संगीत को इस खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है कि आज भी इसका हर गीत, हर दृश्य दिल में ताजगी भर देता है। अभी आप जो गीत सुन रहे थे वो रफी साहब और आशा जी की आवाज में थी। तो पुरानी यादों की उस सड़क पर फिर से हम निकल पड़ते हैं जहां मुस्कुराहटें हैं, शरारतें हैं, और साथ है SD बर्मन के अमर संगीत का जादू। फिल्म है 1957 की 9/2/11। देवानंद द्वारा निर्मित ये फिल्म एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी और इसे रोड मूवी की श्रेणी में भी रखा गया था। ये उनके भाई विजय आनंद की पहली निर्देशित फिल्म थी। 1934 की अमेरिकी फिल्म इट हैपेंड वन नाइट इससे आंशिक रूप से ये फिल्म प्रेरित थी, और इस फिल्म में नजर आए थे देवानंद, कल्पना कार्तिक, मदनपुरी, शशिकला और जीवन। फिल्म का संगीत जो आप सुन रहे हैं SD बर्मन साहब ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे।

1957 में रिलीज हुई एक शानदार रोमांटिक एडवेंचर फिल्म है, जिसे हमने आपको बताया निर्देशित किया था विजय आनंद ने। मुख्य भूमिका में देवानंद थे, जो कि मदन के किरदार में नजर आए थे। कल्पना कार्तिक ने राखी और एक और किरदार इन्होंने निभाया था। इसके अलावा जीवन सुरजीत के किरदार में नजर आए थे, मदनपुरी राधेश्याम राधे के किरदार में थे, शशिकला नीता के किरदार में थी, कृष्ण धवन कुलदीप बने थे, ललिता पवार कुलदीप की माँ बनी थी। इसके अलावा जगदीश राज, हेलेन जिन्होंने बहुत सुंदर डांस किया था, टुनटुन जो एक मकान मालकिन के किरदार में थी, ये सब इस फिल्म में चार चांद लगाने के लिए काफी थे। 1957 में बनी एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म थी, और उनके छोटे भाई यानी कि देवानंद की छोटे भाई उन्होंने, विजय आनंद ने इस फिल्म को निर्देशित किया था। और आप जानते ही होंगे कि जो कल्पना कार्तिक हैं वो देवानंद साहब की पत्नी भी थी। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं, हम है राही प्यार के, आंखों में क्या जी, जो आप सुनी रहे हैं। और हम है राही प्यार के बस अब कुछ देर में ही मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। इन गीतों को अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले, रफी साहब ने। और गीतों में सबसे खास बात पता है क्या थी, उसमें सफर की मस्ती और आजादी की खुशबू दोनों नजर आती है। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम आपको बताएंगे। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म से किशोर दा की आवाज में एक और खूबसूरत सा गीत।

फिल्म 9-2-11 इससे जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। 9-2-11 फिल्म की शूटिंग जब कर रहे थे तो इस फिल्म में उनके साथ जो देवानंद साहब थे उनके साथ कल्पना कार्तिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभा रही थी और आगे चलकर वो देवानंद साहब की पत्नी भी बनी थी। फिल्म का डायरेक्शन देव साहब के भाई विजय आनंद कर रहे थे और देव साहब खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म 9-2-11 की शूटिंग दिल्ली बॉम्बे हाईवे पर चल रही थी और एक बार फिल्म की पूरी यूनिट मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में शूटिंग कर रही थी। शिवपुरी इलाका शायद आपने सुना होगा, वैसे आपको बता दूं कि मेरा होम टाउन वही है, तो रात को उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। ये वो दौर था जब डाकुओं का बहुत शोर था, पूरी टीम एक गेस्ट हाउस में रुकी थी। तभी एक रात देवानंद के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। देव साहब ने अंदर से पूछा, कौन है? तो आवाज आई, हम है बगर सिंह। ये सुनते ही देव साहब के होश उड़ गए और उन्होंने किसी तरह हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा कि सामने बड़ी बड़ी मूछों वाला बंदूक लिए एक आदमी खड़ा है। इससे पहले देवानंद साहब कुछ कह पाते, बगर सिंह ने देव साहब की एक तस्वीर उन्हें दिखाते हुए कहा कि आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ये सुनकर देव साहब की जान में जान आई और उन्होंने अपनी तस्वीर पर ऑटोग्राफ करके उन्हें बगर सिंह को दे दिया। इतना ही नहीं, जाते जाते बागी बगर सिंह ने देव साहब से कहा कि देव साहब अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना, और इतना कहकर वो वहां से चले गए। तो ये वो किस्सा था, शायद देवान साहब इस किस्से को कभी भी नहीं भूले होंगे। 9-2-11 फिल्म थे वो विजय आनंद की पहली हिंदी फिल्म थी और इसमें उन्होंने अपने भाई और बाद में जो हीरोइन थी, बाद में उनकी जो भाभी बनी, उनको लिया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक हॉलीवुड फिल्म इट हैपन वन नाइट से काफी इम्प्रेस थी और देवानंद अगर इस फिल्म में नहीं होते तो शायद ये फिल्म नहीं बन पाती, क्योंकि वो उन्होंने इस फिल्म की जो

कथा थी उसकी, बाहरी उपकियों पर इतना ज्यादा ध्यान दिया था, हर चीज को उन्होंने अपने हिसाब से, जब तक कि वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक उन्होंने उसमें सुधार करते रहे। और उसके बाद जब ये फिल्म बनी तो लोगों ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया।

आशा जी और गीता दत्त की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म 9-2-11 कहानी है मदन नाम के एक बेफिक्र नौजवान की जो अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीता है। उसे एक कार को दिल्ली से मुंबई ले जाने का काम मिलता है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी लड़की की जो लड़के के भेष में उनके साथ सफर करती है। रास्ते में दोनों के बीच नोकझोंक मस्ती और धीरे धीरे प्यार पनपता है, लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सच्चाई सामने आती है, पहचान धोखा और प्यार का असली इम्तिहान इस फिल्म में दिखाया गया है। असली रोड ट्रिप ये फिल्म जो एहसास दिलाती है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग जो थी वो असली लोकेशन पर ही हुई थी और पूरी फिल्म एक रोड पर ही नेचुरल तरीके से फिल्माई गई थी, इसीलिए इसको रोड मूवी भी कहा जाता है। देवानंद का जो कैजुअल और चार्मिंग अंदाज था इस फिल्म में लोगों ने इतना पसंद किया कि वो युवाओं के आइकन बन गए थे। विजय आनंद की ये शुरुआती फिल्मों में से एक थी, लेकिन उन्होंने अपने कैमरे का जो एंगल था और कहानी कहने का जो अंदाज था उससे अपनी एक अलग पहचान बना ली। कल्पना कार्तिक एक लड़के के भेष में इतनी खूबसूरत लगी थी और जब वो सफर करती हैं उस दौर में ये वेशभूषा और एक लड़के के अंदाज में उनको एक हीरोइन को दिखाना काफी दिलचस्प भी था और एक नया कॉन्सेप्ट भी था। ढेर सारे संदेश भी पहुंच रहे हैं, बस कुछ ही देर में उन संदेशों को मैं शामिल करूंगी।

हमारे साथ अजीत भाप सर, प्रमीला भाप सर और सनी जी जुड़े हुए हैं वीरन गांव गुजरात से। अगला संदेश हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम इंदिरा और सार्थक शर्मा का आया हुआ है। विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी जुड़े हुए हैं। लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, नूर, गुलराज, अभिराज जी हमारे साथ हैं। पहाड़ा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल, देवानगन जी हमारे साथ हैं। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार दुर्गा जी पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास सुरेश जाघव, अनीता, सोनल जी का नेहरू चौक पैठन से आया हुआ है। देवशंकर तामोरी, अजय देव, मास्टर अल कबीर, रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। प्रदीप द्विवेदी जी देवरिया यूपी से हमारे साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और राजकुमार डूडी जी, प्रमोद कुमार डूडी जी गांव फरासी जिला हिसार से जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामुरी, अजय देव, मास्टर अल कबीर, रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहार बालोद से हैं। अगला संदेश जो हमारे पास पहुंचा है ये पंजाब खेड़ा से भूषण खेड़ा, फालसिका पंजाब से भूषण खेड़ा जी और उनके परिवार वालों का आया हुआ है। नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल और परिवार के सभी सदस्य हैं। सुदर्शन मुखी जी ने बड़े बहुत ही सुंदर स्टाइल से हमें लिखा है इस फिल्म का नाम 9/2 और 11। और अगला जो संदेश है जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा का है। चंडीगढ़ से अनीता अनेजा, विमल अनेजा जी हमारे साथ हैं। डीवी राणा नेहरू भैया दिल्ली से हैं। राजकोट से परवीन बाबू, रेशमा सकीला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने जगे, अच्छा ये अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर जी हैं। बटिंग खेड़ा से पंजाब से मिंचू टॉमस, पिंकी लवली जी हैं। और अगला संदेश या संबलपुर काकेर से फागुन राम, ज्योति ओचस्वी जी का है। नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज, हिमांशु जी हमारे साथ हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहनशु, उषा टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक जी हैं। ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, कोचवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमारे पास संदीप मक्कर जी का आया हुआ है जो जालंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन और परिवार के सभी सदस्य हैं। मुकेश कासलेकर जी तहसील बरुण अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल जी छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता जी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं हमारे साथ। और पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बन्ने ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली जी बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, पाट डिंगिया जी हमारे साथ हैं। हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा जी का एक और संदेश है। लालगिरी गोस्वामी हेमलता, हिना हर्षित जी, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा, पूजा परिहार जी हैं। तो आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ इस सफर में, हमारे हम सफर बनने के लिए। दो संदेश और हैं श्रीनगर कश्मीर

ताहिर डार उर्फी जान यूसरा जी हमारे साथ हैं। एक और संदेह से है, ये गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से साइना हसन और सैयद मसरूम जी।

तो दोस्तों 9-2-11 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सफर है, मस्ती है, प्यार है और जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश देती हुई फिल्म है। ये पुराने सिनेमा का जादू है जब टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन असलीपन भरपूर था। उम्मीद करते हैं कि आज की ये फिल्म आपको जरूर पसंद आई होगी। हमेशा की तरह यही कहूंगी कि अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो वक्त निकालिए और जरूर देखिए। फिलहाल मैं अब आपसे अनुमति लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई फिल्म के साथ। तो अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को ही कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: उर्दू समाचार साढ़े दिल्ली के अंदर तो
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। पश्चिमी बंगाल च बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने लिए आज दोपहर बाद कोलकाता च मीटिंग होगी। रक्षा खोज ते विकास संगठन डीआरडीओ ते भारतीय हवाई फौज ने उड़ीसा के तट तों टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारा रक्षा प्रणाली की सफल परख की है। रेलवे ने रेल सुरक्षा से जोर दिंदे उत्तरी रेलवे के मुख रूटा से कवच आटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के विस्तार को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्व आर्थिक स्थिरता के थम वजो भारत की बढ़ रही भूमिका और अंतरराष्ट्रीय खुशहाली विच देश के महत्वपूर्ण योगदान उजागर किया है। आईपीएल क्रिकेट विच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम च दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होगा। पश्चिमी बंगाल च बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने लिए आज दोपहर बाद कोलकाता च मीटिंग होगी। केंद्रीय निगरान ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग विच मौजूद रहेंगे। वह कोलकाता पहुंच गए ने। भाजपा ने हाल ही विच हुई विधानसभा चोणां विच इतिहासक जित दर्ज की, जिस नाल सूबे विच टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत हो गया। पश्चिमी बंगाल की पहली बीजेपी सरकार का सहुं चुक समागम कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड विच होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रधान नितिन नवीन और सारे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सहुं चुक समागम विच शामिल होने की उम्मीद है। रक्षा खोज के विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय हवाई फौज ने कल उड़ीसा के तट तों टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारा हथियार प्रणाली की पहली परख उड़ान सफलतापूर्वक की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि तारा देश की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो अनिर्देशित हथियार को सटीक निर्देशित हथियार में बदलती है। मंत्रालय ने दसा कि तारा को डीआरडीओ होर प्रयोगशालावां नाल हैदराबाद रिसर्च सेंटर इमारत प्लस वालों विकसित डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य जमीन आधारित टीचे नष्ट करने लिए घट कीमत वाले हथियार की माड़ू समर्था से शुद्धता वधाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली टैस्ट उड़ान लिए डीआरडीओ, हवाई फौज, डीसीपीपी और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने इस भारत की स्वदेशी रक्षा समर्थावान अगे बढ़ाने एक महत्वपूर्ण घटना दसिया है। रेलवे ने रेल सुरक्षा से आधुनिकीकरण से जोर दिंदे उत्तरी रेलवे के मुख रूटा से स्वदेशी तौर पर विकसित कवच आटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजैक्ट से लगभग

इसका मकसद कम कीमत वाले हथियार की बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचकर दुश्मन को हलाक करने की सलाहियत में इजाफा करना है। यह हथियार तरक्की और इसके बड़े पैमाने पर तैयारी से मुतालिक शराकतदारों और दीगर भारतीय सनअतों ने तैयार किया है और इसे बड़ी तादाद में तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। न्यूज डेस्क से सौम्य शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।

0: अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें चंद माह के अंदर ही सोमनाथ से वाबस्ता दो अहम तकरीबात में शिरकत करने का शर्फ हासिल हो रहा है। इससे कबल इस साल के शुरू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की थी, जिसका अहतमाम मंदिर पर पहले हमले को 1000 पूरे होने के सिलसिले में किया गया था। वजीर आजम ने सोमनाथ को भारत की तहजीबी कुव्वत और मजबूती की अलामत करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर के सफर से तबाही से लेकर तखलीक तक की एक तहरीक की अक्कासी होती है और इससे यह जाहिर होता है कि बार बार के हमलों और मुश्किलात के बाद भी किस तरह अकीदा और सकाफत बरकरार रह सकते हैं। वजीर आजम ने आजादी के बाद मंदिर की तामीर नो में भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का ये मानना था कि सोमनाथ की तामीर नो एक कौमी फर्ज है। वजीर आजम ने सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी नजरिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दिलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1000 दिन के लिए सोमनाथ में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हमवतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और बकौल उनके मुल्क की तहजीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का एहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की यह मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे।
1: इसी तरह की मैराथन और वॉकाथन का इनेकाद आकाशवाणी के मुल्कगीर नेटवर्क ने भी किया था, जिसके तहत 90 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़िदा इन तकरीबात में अवामी सरगर्मी और लोगों तक पहुंचने को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस मैराथन से लोगों तक चुस्त दुरुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुंचेगा।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
1: आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इस महीने मुल्क भर में 232 आकाशवाणी मरकजों पर मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबात मुल्क की खिदमत में अवामी नशरियात के तौर पर आकाशवाणी के तआवुन के हिस्से के तौर पर मनाई जा रही है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका के तजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदाम किए हैं। छोटे कारोबारी घरानों की जानिब से अदालत ने इन महसूलात को चैलेंज किए जाने के बाद ये फैसला सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल न कर पाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेन के साथ टेलीफोन पर उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तरफैन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि एक ऐसे निजाम को लाखों लोगों की जानों को खतरे में डालने वाला हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो अपने ही लोगों की जान लेता हो। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासरा मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विद्युत हलाई चिरू थाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत

0: रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR

0: मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैंड के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैंड ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के

स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सबका विमलेश का नमस्कार कीजिए स्वीकार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है,
2: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
1: दुनिया के मेले में भी हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
2: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिकता की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें। खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
1: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का। लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद।
2: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। एनसीईआरटी उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा, ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैद्यराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
1: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहु ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।

0: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है, गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
1: तो श्रोताओ, लगा कुछ अंदाजा?
0: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओ, आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसके रहस्यमय दुनिया की। तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
1: तो अजीत जी, पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
0: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
1: जी,
0: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
1: जी,
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।
1: वो क्या?
0: वो ये कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं।
1: जी,
0: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है, जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है, जैसे प्रशांत महासागर।
0: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
1: जी,
0: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं, जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
1: जी अजी जी, एक और महत्वपूर्ण बात, और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं, जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
0: विमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। आपसे शुरू करें।
0: जी, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
1: जी,
0: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
1: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका के पास है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं।
0: और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा महासागर है। आपको विशेष रूप से बता दें कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी श्रृंखला ये भी जानिए में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
0: तो प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओ, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: जी,
1: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माई नेम।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
5: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
1: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
3: मौलाना अबुल कलाम आजाद।

0: ये गजल है भारत के मशहूर राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहमदिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।
2: मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने। मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा।
1: पर बालक अबुल

0: उनके बचपन के खेल तो निराले हुआ करते।
1: इसको इधर लगा देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए? रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें।
2: ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है मैंने,
1: पता है क्यों?
2: क्यों? ताकि अब आप लोग संदूक पर चिल्ला चिल्ला कर कहें, हटो हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं।
1: लेकिन भाई यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, हम किससे कहें रास्ता दो?
2: अरे ये तो खेल है।
1: अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो गिर जाओगे।
2: नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं।
1: क्यों, तालियां क्यों बजाएं हम?
2: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
1: अच्छा तो ये बात है।
3: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
0: वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
3: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाज शास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
0: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
3: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी

0: शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
1: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
0: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
1: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
2: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हों?
1: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमा

0: प्रांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
1: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है

0: की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
1: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
2: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
1: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
0: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
2: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
1: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
2: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
1: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
0: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान और विश्वास।

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: दक्षा सप्पा एंतीस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चिंग एनपिन उमंग मीडियम विकास आकाशवाणी करगी लिखाना जैनुत कसता वक्स पुतुसुत सुम सोसु कसता ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस कना प्रोग्राम अंतर्गत रिलीला गेयर बजट।

0: एम वेव 71 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 बजाते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खबरें। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग मुनाकिद करेगी। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मुल्क में ही तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैन अलाक्वामी तिजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयद किए गए 10% महसूल को गैर कानूनी करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात की यकीन दहानी में मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियाई हथियारों का हामिल न हो। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल बीजेपी कानून साज पार्टी आज अपना लीडर मुंतखब करने के लिए कोलकाता में मीटिंग करेगी। पार्टी के मरकजी मुशाहिद और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी ने रियासत के हालिया असेंबली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज की है, जिसके बाद रियासत में टीएमसी का 15 साल दौरे हुकूमत खत्म हो गया। मगरबी बंगाल की पहली बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नवीन और बीजेपी के जेर इक्तदार तमाम रियासतों के वजराए आला हलफबरदारी की इस तकरीब में शिरकत करेंगे। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मजीद फासले तक मार करने वाले छोटे हथियार तारा की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। यह तजुर्बा कल ओडिशा के साहिल से कुछ दूर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पहली आजमाइशी परवाज पर डीआरडीओ, भारतीय फजाइया, डीसीपीपी और सनत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस कामयाबी को मुल्क में ही तैयार किए गए दिफाई हथियारों की तरक्की के मैदान में एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि मार करने की दूरी में इजाफे वाला ये हथियार तारा मुल्क में तैयार किया गया ऐसा पहला ग्लाइड हथियार निजाम है, जो बगैर रहनुमाई वाले हथियार को बारीक निशाने वाले हथियार में बदल देता है। वजारत ने बताया कि तारा को हैदराबाद के तहकीकी मरकज इमारत प्लस और डीआरडीओ की दीगर लेबोरेटरीज ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद कम कीमत वाले हथियार की बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचकर दुश्मन को हलाक करने की सलाहियत में इजाफा करना है। यह हथियार तरक्की और उसके बड़े पैमाने पर तैयारी से मुतालिक शराकतदारों और दीगर भारतीय सनतों ने तैयार किया है और इसे बड़ी तादाद में तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे। 1951 में मंदिर का अहिया किए जाने के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद के हाथों इफ्तिताह किए जाने के बाद से 75 साल पूरे होने के मौके पर जनाब मोदी वहां जाएंगे। वजीर आजम ने आज एक कौमी रोजनामे में एक मजमून तहरीर किया है और इसमें ये जानकारी दी गई है। अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें चंद माह के अंदर ही सोमनाथ से वाबस्ता दो अहम तकरीबात में शिरकत करने का शरफ हासिल हो रहा है। इससे कबल इस साल के शुरू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की थी, जिसका एहतमाम मंदिर पर पहले हमले को

हजार साल पूरे होने के सिलसिले में किया गया था। वजीर आजम ने सोमनाथ को भारत की तहजीबी कुव्वत और मजबूती की अलामत करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर के सफर से तबाही से लेकर तख्लीक तक की एक तहरीक की अक्कासी होती है और इससे जाहिर होता है कि बार बार के हमलों और मुश्किलात के बाद भी किस तरह अकीदा और सकाफत बरकरार रह सकते हैं। वजीर आजम ने आजादी के बाद मंदिर की तामीर नौ में भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का ये मानना था कि सोमनाथ की तामीर नौ एक कौमी फर्ज है। वजीर आजम ने सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी नजरिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दिलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1000 दिन के लिए सोमनाथ में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हम वतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और बकौल उनके मुल्क की तहजीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का एहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका की तिजारती उमूर से मुतालिक एक विफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैन अल-अक़वामी तिजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तिजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदाम किए हैं। छोटे कारोबारी घरानों की जानिब से अदालत ने इन महसूलात को चैलेंज किए जाने के बाद ये फैसला सामने आया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पिछले साल नाफिज किए गए वसी तर आलमी महसूलात पर रोक लगाए जाने के बाद ये नए महसूल लगाए गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल न कर पाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लेन के साथ टेलीफोन पर हुई उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तरफेन के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक है कि एक ऐसे निजाम को लाखों लोगों की जानों को खतरे में डालने वाला हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो अपने ही लोगों की जान लेता हो। इस बातचीत में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर भी तवज्जो दी गई। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन से जोर देकर कहा है कि वो स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में हुए तिजारती मुआहदे के तहत टैरिफ में कमी के वादों को पूरा करे। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए यूरोपीय यूनियन को अमरीका की आजादी की 250वीं सालगिरह तक की मोहलत दी गई है, बसूरत दीगर उस पर ज्यादा टैरिफ आयद किया जा सकता है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाई हुरमुज से बहरी जहाजों को बहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है। अमरीका के 2 अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का यह कदम खलीज के खित्ते से मुतालिक अमरीका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमरीका के कलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है और ईरान के साथ हालिया बातचीत को ये कहते हुए बहुत खुशाइन करार दिया है कि मुस्तकिल समझौते का कवि इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था।

0: और उसने 19 ओवर्स में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग मुनक्किद करेगी। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मुल्क में ही तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैन अलाकवामी तिजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयद किए गए 10% महसूल को गैर कानूनी करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात की यकीन दहानी में मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियाई हथियारों का हामिल न हो। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश नेक परवीन फिल्म का नगमा अनुराधा की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया है इकबाल कुरैशी ने।

0: और शामिल लीजिए, सुनिए दाता फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर, मनोहर दास, सादत सरगम की आवाजों में, जिसे मौसीकी ने सजाए कल्याण जी आनंद जी।
1: जयदेव साहब आज उर्दू सर्विस में

0: सुषमा श्रेष्ठा धर्मनी कोल्हापुर और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म थी द बर्निंग ट्रेड, नरमनी गाते शायर मौसीकार आर डी बर्मन। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है मारूफ मौसीकार जनाब जयदेव के साथ की गई एक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी ये जब्बार ने।
1: जयदेव साहब, आज उर्दू सर्विस में आपका इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ ज्यादा ही खुशी का एहसास हो रहा है, इसलिए कि वो फिल्म अनकही के लिए बेहतरीन मौसीकी का ऐलान किया गया है। लिहाजा उर्दू सर्विस के सामीन और अराकीन की जानिब से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं।
2: जवाब साहब, मैं इस प्रोग्राम के लिए आपका मैं मशकूर हूं और इस प्रोग्राम को सुनने वालों को भी मैं बहुत मशकूर हूं और बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आज की इस नशिस्त में हम आपके कुछ नए गानों के बारे में बात करेंगे और कुछ गुफ्तगु होगी पुराने गीतों के बारे में, और गीतों के कुछ हिस्से भी अगर मुमकिन हो सका तो हम इस वक्त सुनेंगे और सुनने वालों को भी सुनवाएंगे। सबसे पहले मैं अनकही के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि इस फिल्म पर आपको ये नेशनल अवार्ड मिला है, इसके बारे में आप अपनी क्या प्रोफेशनल राय देते हैं? क्या इसमें खसूसियत थी आपके नुक्ता नजर से मौसीकार होने की?
2: जबा सर, मेरी जिंदगी में मैं बहुत सी फिल्मों में म्यूजिक दिया है
1: जी, यकीन
2: लोग चंद लोग ऐसे मिले हैं जो समझदार थे, जो म्यूजिक को भी समझते थे, अपनी कहानी को भी, इस मीडियम को भी
1: जी।
2: उनमें से एक अमोल पालेकर है
1: जी।
2: तो अमोल पालेकर जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी घरौंदा
1: जी,
2: मेरे घर में उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपनी फिल्म का म्यूजिक मिल देंगे
1: जी।
2: तो जब उन्होंने फिल्म शुरू की अनकही तो मिस्टर मिसेज अमोल पालेकर दोनों मेरे पास आए। कहानी चूंकि खनोलकर जी की लिखी हुई एक फिल्म प्ले प्रदेश से
1: अच्छा,
2: और जब उन्होंने कहानी सुनाई तो कुछ मैंने उनसे कहा कि जयदेव जी को मौत के बारे में गाना बताइए।
1: अच्छा।
2: तो मैंने उनसे कहा कि आप लिखवाना चाहते हैं या लिखे हुए गाने जो है ट्रेडिशनल या इंटरनेशनल? तो मैंने कबीर जी का बिजनेस सुनाया उन्हें, कौन ठगुआ नगरिया लूटल हो।
1: अच्छा।
2: आए जमराज पलंग चढ़ बैठे, मैंने असुआ टूटल हो। एक्सेप्टेड।
1: ठीक।
2: उसके बाद वो कहने लगे कि

आजा आजा।

0: जयदेव जी, साहिर साहब के साथ आपका काफी लंबा एसोसिएशन रहा है और कई फिल्में आपने उनके साथ की हैं।
1: फिल्में तो मैंने ज्यादा नहीं की उनके साथ, मगर वो मेरे पुराने साथी थे, हम एक ही शहर के रहने वाले हैं
0: जी। देखिए ना,
1: और बहुत करीबी रिश्ता था हमारा
0: जी,
1: बिल्कुल भाई थे हम।
0: उनके साथ काम कर
1: हम दोनों मैंने फिल्म की उनके साथ
0: जी।
1: मुझे जी
0: ने
1: चार गाने लिखे, मेरी पहली फिल्म गुरु को भाई उन्होंने गजल लिखी थी।
0: अच्छा।
1: सुरमई रात है, सितारे हैं
0: जी,
1: आज दोनों जहां हमारे, सुबह का इंतजार कौन करे
0: जी।
1: बाद में उनके मरने से कुछ एक दो साल पहले जो फिल्में मैं उनके साथ कर रहा था, मजबूत किस्मती से उनको हार्ट अटैक आने शुरू हुए, वो जो फिल्म
0: मुकम्मल ना हो सके
1: वो नक्शा मेरे साथ की।
0: फिल्म हम दोनों के तमाम ही गीत उन्होंने लिखे और आपने धुने बनाई, बड़े मकबूल हुए, बहुत ही खूबसूरत हैं। इनमें एक खास कैफियत का हामिल एक गीत लगता है जो मोहम्मद रफी की आवाज में है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
1: तो फिक्र को
0: धुए में उड़ाता चला गया। जरा इसके बारे में कुछ आप हमें बताइए कि इसका कैसे ये
1: इंटरेस्टिंग किस्सा ये कि साहर, चूंकि हम लोग बहुत करीब थे तो साहर साहब मुझे अक्सर अच्छे अच्छे शोरा का कलाम सुनाया करते थे।
0: अच्छा।
1: अदम उनके बहुत फेवरेट
0: अब्दुल हमीद,
1: तो अदम साहब की वजह थी कि मगर विष्णु से जान लड़ाता चला गया।
0: अच्छा।
1: मगर विष्णु से जान लड़ाता चला गया, कुछ ऐसे था, वो रफ्तार रफ्तार जान पिलाते चले गए, मैं रफ्तार रफ्तार होश में आता चला गया।
0: अच्छा।
1: तो इसको मैंने कंपोज किया था
0: जी।
1: और जब देव साहब ने इस ढंग को सुना तो
0: उन्होंने
1: पहली पिक्चर मैंने हम दोनों के साथ की थी
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा साहब साहब इसी पर कुछ लिखिए। अब साहब बहुत मुश्किल परेशान होते थे कि तुम ऐसी चीजें सुनाते हो जिनके ऊपर लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है
0: जी।
1: फिर भी वो बहुत इंटेलिजेंट राइटर था, तो उसने उस फिल्म के हानि के हिसाब से मैं गर्दिशों से जान लगाता चला गया, वो लिखे जिंदगी मैं जिंदगी के साथ
0: लगाता
1: चला गया, हर फिक्र को धो
0: लिया,
1: चूंकि उसमें एक सिगरेट लाइटर का डाल दिया था,
0: उसमें म्यूजिक है खास धुना में छोटी सी बनाई, म्यूजिकल लाइटर है वो, तो इस तरह ये गीत लिखा गया। साहिर साहब से आपने जैसे फरमाया कि आपका एसोसिएशन बहुत पुराना था, गीत निगार की हैसियत से आपकी क्या राय उनके बारे में?
1: शायद सर वैसे तो शायद थे और नजमें से लिखते थे
0: जी,
1: तो
0: जो गजलें भी लिखी हैं,
1: मगर वो बहुत काबिल आदमी था वो।
0: इसमें दो राय नहीं,
1: मुझ पर उनका एहसान है कि उर्दू में उनसे बहुत सीखा, और उस आदमी की एक फोटोजेनिक मेमोरी थी, वो किसी कलाम को पढ़ते थे उसमें जो भी बेस्ट हुआ करता था उनको हमेशा के लिए याद है,
0: वो रजिस्टर हो गया। जयदेव साहब, कई गीतों के बारे में गुफ्तगू हुई और जी तो चाहता था कि ये गुफ्तगू जारी रहे, मगर वक्त की कमी ने मजबूर किया है इस बात पर कि इस प्रोग्राम को हम खत्म करें, लिहाजा इससे पहले मैं एक बार आपको अपने तमाम सुनने वालों की जानिब से इस एजाज के लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूं एक बार फिर, जो फिल्म अनकही के लिए आपको मिला, और आपकी यहां आमद पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं उर्दू सर्विस की जानिब से और अपने तमाम सुनने
1: आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, और सलाम प्यार दुआ नमस्ते,
0: खुदा हाफिज़।

के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अजीज अहमद खानवार से और साथियों को सुनी फिल्म है गर्म हवा, आप तमाम सामईन के लिए।

मंदिर का अहया किए जाने के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद के हाथों इफ्तिताह किए जाने के बाद से 75 साल पूरे होने के मौके पर जनाब मोदी वहां जाएंगे। वजीर आजम ने आज एक कौमी रोजनामे में एक मजमून तहरीर किया है और इसमें ये जानकारी दी गई है। अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें चंद माह के अंदर ही सोमनाथ से वाबस्ता दो अहम तकरीबात में शिरकत करने का शरफ हासिल हो रहा है। इससे कबल इस साल के शुरू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की थी, जिसका एहतमाम मंदिर पर पहले हमले को 1000 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में किया गया था। वजीर आजम ने सोमनाथ को भारत की तहजीबी कुव्वत और मजबूती की अलामत करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर के सफर से तबाही से लेकर तखलीक तक की एक तहरीक की अक्कासी होती है और इससे ये जाहिर होता है कि बार बार के हमलों और मुश्किलात के बाद भी किस तरह अकीदा और सकाफत बरकरार रह सकते हैं। वजीर आजम ने आजादी के बाद मंदिर की तामीर नौ में भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का ये मानना था कि सोमनाथ की तामीर नौ एक कौमी फर्ज है। वजीर आजम ने सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी नजरिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1000 दिन के लिए सोमनाथ में खसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हमवतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ

दुसो तुर्गुन मिनट सुनची का प्रोग्राम यन मजेद नी फयुल मीडिया मुकंग जस आकाशवाणी करगिली का नाजरिन्युत वक्स पु खबर उन्नीत हो सोसु कसता पुर्गी खबर उन्ला यन मजेद

0: 샤르바나 중 자나 다르시 투스병아 스날 상록솔로 총아다 그라두문인 나야 타운마다 차도 차나 퍼스트 에 쪽스 각자는 맞비 락시순 마다 잡자오나 각자는 쪽 양도나마다 가자가자노 가가 하고이즈 그림스 가도작나 프로그램 작나도나 마다 각란자 양 사마지 갈라시에노 마다 손아 수주에노 락투드 바세 Kacik seni cik sosan atas lazba, mana kacchan itu yang dona volunteer lasser cacing. Kalau kata ngati zille kerjili angka tu, tanah kata lukso, tanah edaron ni cakusna cakusparik. Mana kelas dusti ka kons jang rin metpa, kong kunti aram rahati zindagi fangse. Yakziri lasun fangse, ga jaga cika ga gradum cik chana, ga thawik chana, ya face sangata ga. Kudreti afat cik carut karut cik sanggul cik mana katuk di sokspan ya diang lazbakan munis mehnat base kongas praluks benduk di mesoni roks bat pemina kongaja kacika khat nak katuk kong dalamna ping segunca ya kaja kacika mali imdad cikar kosha sot nak katuk mimasun laga kasmi eskap lazbar duit chenir nak katuk kongaja zuga roks banjar na junanu ata bat hondu chana ngate sangshar ba na chuning sang junanu ko lakthut base junanu khak lin mat pinga tes phraluk bar ko shasin chuk yang duna gaja gaja ngata blood donate da shasin ju khak ngata donate ba thong ju ga ko shash ko skani ngata mariz zuni mina chana junanu ates khak le ne ngates junanu ngati khak po ada ba pi phraluk ba cha man khak chanin chuk chazer ban dhari si tus pinu ngata suna susuna nafrat ba pi ya fashes bachaspu ya suna susuna barabar hak hukuk mitop chaspu ngata am ngata jagzri zindagi ngata chatu ngata chana di tsok tusuna ngates fashes maba suna susi chos suna susi ngates tafaroka machachukpa yani fashes machachukpa ngates mimang suna ngates rukuz bachaspu mana kakchan enzu chana dinisi di World Red Cross Red Crescent Day sirip ngata du jak chik tzadar ngates misticha balki duni kana ngates fankelene yang duni kana ngates hagolene ngates ngati zindagi anuk chingyan ngan mimang sunla rukos patpi gacha gacha ka mimang sunla rukoshyat naka tunu nyanu ngates rukosla chukpe pi fan ngates fraluks bacha nispara maumik sun yantang supa las be malchan anuk las bakhanu ni mingna arteluks yang yambo yambo strong looks bu samchi khakchani discord line dakpa shazia zaidi memegana tsugle chukna test stressula nyan madat
1: health or safety ka kya maane hai kya kya parameters isme include
2: dekhi jahan tak main samajhti hu it means protecting people's physical mental well being to ye jo hai khali physical nahi balki mental well being ki bhi baat kar raha hai iska definition kafi broad hai agar hum dekhe to prevent karna accidents injuries ya kisi bhi tarike ki illness jo workplace mein mental stress ya long hours ya kisi accidents ke through occur hoti hai
1: mam kuch common hazards jo workplace mein aam dekha jata hai
2: see it depends department wise but jo major aap agar hazards ki baat kare to aapka slippery floor ho gaye infrastructure ka development na hona exposure to chemicals ho gaya faulty machinery fire hazards noise pollution stress overwork ye hame common har department mein nazar aate hain
1: mam kuch common safety issues jo workplace pe workers face karte hain kya hai
2: सबसे इम्पॉर्टेंट तो मुझे लगता है कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस अब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया खासकर आजकल के ज़माने में अगर हम बात करें हम काफ़ी ज़्यादा डिजिटाइज हो गया है हमारा वर्क स्पेस तो उससे एक स्ट्रेस कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता है इक्विपमेंट्स हमारे पास ठीक नहीं होते हैं इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है लॉन्ग वर्किंग आवर्स है डेडलाइंस का प्रेशर है ट्रेनिंग नहीं है अनसेफ मशीनरी है सो दीज आर द मोस्ट कॉमन सेफ्टी इशूज़ दैट वी सी टूडे
1: मैम इंडिविजुअल्स जो भी वर्कर्स है वो वर्क प्लेसेस पे अपने आप को कैसे यानी सेफ रख सकते हैं कितना केयर कर सकते हैं
2: मुझे लगता है सेफ्टी रूल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन होने चाहिए और अगर वो मेंशन है तो वर्कर्स को उसको पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए अगर वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ पे एक्सपोज्ड है वो केमिकल या किसी ऐसी मशीनरी से तो प्रॉपर प्रोटेक्टिव गेयर यूज़ करना ब्रेक्स लेना वेरी इंपॉर्टेंट कॉफ़ी ब्रेक टी ब्रेक हाइजीन को मेंटेन करना और स्ट्रेस को मैनेज करना टू हैव अ बैलेंस बिटवीन देयर लाइफ एंड द वर्क लाइफ दे आर
1: मैम अवेयरनेस का कितना इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम देखते हैं कि वर्कर्स जो वर्क प्लेसेस पे काम

0: उनको अवेयरनेस नहीं होती है सेफ्टी या हेल्थ को लेकर, तो अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट है?
1: सी, अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन आजकल के ज़माने में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे कैंपेन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को करने चाहिए, सेफ्टी कैंपेन्स या वर्कशॉप्स जिसमें वो खुल के इन इश्यूज़ को एड्रेस करें, स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स करना, सोशल मीडिया अवेयरनेस करना, आजकल एवरीबडी इज़ ऑन सोशल मीडिया, उसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करना, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लेना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को पता हो कि वो किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को वाया द एम्प्लॉयर सॉल्व करवा सकते हैं।
0: वर्क प्लेसेस पे खासकर अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं इंडिया में, वर्कर्स एज वेल एज जो एम्प्लॉयर होते हैं वो कितना स्टैंडर्ड जो पॉलिसीज होते हैं या रूल्स होते हैं कितना फॉलो करते हैं?
1: देखिए, अगर हम सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करें कि वो कितने प्रॉपरली फॉलो होते हैं हमारी कंट्री में, तो नॉट ऑलवेज के वो हमेशा ही फॉलो नहीं होते, हालांकि लॉ एग्जिस्ट करता है हमारा, बट उसका इन्फोर्समेंट इतना वीक है या उसकी अवेयरनेस इतनी कम है, सेंसिटाइजेशन है ही नहीं कि हमें पता नहीं है। और जो कॉस्ट कटिंग होती है उससे कई बार जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना पुअर होता है कि उसका कोई भी बेनिफिट वर्कर्स को नहीं मिल पाता है। जी
0: मैम, मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो मेंटली स्ट्रांग होना कितना इम्पोर्टेंट है, और अभी जो नेचर ऑफ वर्क चेंज हुआ है जिसकी वजह से एक मेंटल प्रेशर भी पड़ता है, वो कितना इम्पोर्टेंट है?
1: देखिए, अगर हम आज की बात करें 2026 जहाँ पे AI आ गया है, ठीक है, एक वो डर बैठ गया है कि कहीं AI हमारी जॉब्स ना खा ले, तो कहीं ना कहीं ये मिथ भी है क्योंकि हमें ट्रेनिंग नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है, और उससे मेंटल हेल्थ पे जो है हमारी इतना स्ट्रेस पड़ता है, प्रोडक्टिविटी हमारी अफेक्ट होती है, क्योंकि अगर आप मेंटली वेलबींग नहीं है आपका तो आप काम अच्छे से अपना इनपुट नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी मेंटल वेलबींग को एड्रेस करना, डिसीजन मेकिंग उसके हिसाब से करना, क्योंकि बर्नआउट होना इज़ वेरी नॉर्मल, बर्नआउट होना, उससे आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। और जिस तरीके से आपने कहा कि हम देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग बहुत कॉमन हो गई है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बहुत कॉमन हो गई हैं, इससे एक लैक ऑफ फियर, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हुआ है वर्कर्स के अंदर कि एक साल के बाद क्या, स्टेबिलिटी जो जॉब से पहले मिला करती थी वो कहीं ना कहीं कम हो गए, जो इन एविडेंटली उनके वर्कलोड पे दिखाई देता है, हमें उनके मेंटल स्ट्रेस में हमें नज़र आता है, बिकॉज उन्हें एक डर रहता है कि व्हाट इफ एक साल के बाद अगर इन्होंने हमारा टेन्योर आगे नहीं इंक्रीज़ करा तब हम क्या करेंगे। तो जॉब्स का जो मेन रोल होता था स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है, जैसे कि हम मॉनिटरिंग ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं सेफ्टली जिससे हम वर्कर्स के वर्कलोड को डिक्रीज कर सकते हैं, AI हम एज अ फियर ना इंड्यूस करके बट एज अ हेल्प इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट पीपल आर नॉट स्केयर्ड ऑफ यूजिंग इट एंड यूजिंग इट इन अ राइट वे, ताकि उनका वर्क प्रेशर और वर्क जो उनका स्ट्रेस है वो कंपेरेटिवली उससे कम हो सकता है। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग टूल्स बना सकते हैं, जैसे जापान में आफ्टर 5 o'clock आपका सिस्टम बंद हो जाता है, आप यू आर नॉट अलाउड टू वर्क बिकॉज दे फोकस ऑन द मेंटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। तो जैसे हम देखते हैं कॉर्पोरेट्स में इंडिया में लोग 9-10 बजे तक काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ऑनलाइन हम विद द हेल्प ऑफ सच टूल्स वी कैन वर्क ऑन इट टू मेक अ बेटर सेफ वर्क प्लेस।
0: मैम, जैसे कि आप दिल्ली से बिलोंग करती है और अभी लद्दाख में काम करती है, तो इन दोनों प्लेस पे क्या डिफरेंसेस है हेल्थ और सेफ्टी में?
1: जी देखिए, वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, मैं कंपैरेटिवली स्कूल्स की बात करूँगी बिकॉज आई एम वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्रॉपर पॉलिसी अभी HR या HR रिक्रूटमेंट नहीं आया है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है वर्क प्लेसेस में, एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन होना, आपका काम डिफाइन होना, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर होना एम्प्लॉयर की तरफ से, उसी के हिसाब से आपका काम करना, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिल्ली ने अचीव कर लिया, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल, तो काफ़ी इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, बट कंपेरेटिवली लद्दाख में मुझे ये चीज़ अभी इतनी प्रोमिनेंट नज़र नहीं आई है। तो एक HR डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस हमें एज एम्प्लॉयर बहुत ज़रूरी है समझना वर्कप्लेस को बेटर बनाने के लिए, खासकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, इंफ्रा भी इज़ अ पार्ट ऑफ इट, तो इंफ्रा अच्छा होगा तो आपकी फिजिकल और ये जो ये वाले प्रॉब्लम्स हैं इंजरीज और ये हम कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स, ये हम उस पर काम कर सकते हैं, और मेंटल वेलबींग के लिए मुझे लगता है एक प्रॉपर HR डिपार्टमेंट का होना बहुत

0: sensitize and create awareness and make job policies accordingly.
1: क्या चेंजेस आप सजेस्ट करती है जिसके माध्यम से जो वर्क प्लेस पे खासकर जो वुमेन्स हैं उनके लिए सेफ प्लेस बने?
0: देखिए, अगर मैं सजेस्ट कर सकूंगी चेंजेस एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो होंगे रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स. वो एक मंथली चेक्स होना, इंस्पेक्शंस होना बिल्डिंग्स की, लैब्स की, फायर सिस्टम की, खाली पेपर पे नहीं, मतलब इनका एक्चुअल इंस्पेक्शन होना. फिर उसकी रिपोर्ट्स देना डिपार्टमेंट्स में कि ये इस पे काम करना आया है, ताकि हम फिजिकल एक फिजिकल उसको सिक्योर कर सकें. फिजिकल सिक्योरिटी हम अपने टीचर्स को या स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. खासकर सेफ्टी ट्रेनिंग मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेन करना टीचर्स को, ठीक है, इवन स्टूडेंट्स को भी, बेसिक फर्स्ट एड आपका या

0: ट्रेन करना टीचर्स को, ठीक है, इवन स्टूडेंट्स को भी बेसिक फर्स्ट एड आपका, या डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे लास्ट ईयर हमने यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल भी कराई थी बिकॉज इट इज़ अ टेरन एंड यहाँ अर्थक्वेक्स होना बहुत नॉर्मल है, तो उस तरीके का इमरजेंसी रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग होना और मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, काउंसलिंग करना, टीचर्स को भी काउंसलिंग करना, उनका अननेसेसरी वर्कलोड को कम करना, डिपार्टमेंट को इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाना कि जो डिपार्टमेंट में वर्कलोड हो वो एफिशिएंटली डिवाइडेड हो, सो दैट किसी एक पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं आ रहा है, और टीचर्स के लिए एक ऐसा स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना विदाउट फियर सो दैट दे कैन ऑल्सो फंक्शन वेल, और ड्रिल्स फायर की करवाना, अर्थक्वेक्स की कराना, इवैक्यूएशन खासकर कराना, वो बहुत आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लियर सेफ्टी गाइडलाइंस होनी चाहिए हर जगह, डूज एंड डोंट्स जो हमें फॉलो करने चाहिए, खाली लैब्स में नहीं, साइंस लैब्स में नहीं बल्कि कॉरिडोर्स में, क्लासरूम्स में, और सीसीटीवी फुटेज, आजकल टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके सीसीटीवी कैमरेज जो हमारे स्कूल में भी काफ़ी इम्प्लीमेंटेड है उनका यूज़ करना, डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम्स करवाना, तो कम्युनिकेशन का चैनल क्लियर रखना जो इमरजेंसीज के थ्रू टीचर्स हमें ईजिली हमारे पास आकर अपनी बात कर सकते हैं, या वो ओपन डोर पॉलिसी रखना अकाउंटेबिलिटी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए. सो आई थिंक दीज आर सर्टन थिंग्स दैट वी कैन डू इन नॉट इन जस्ट द एजुकेशन डिपार्टमेंट बट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एज पर टू द रिक्वायरमेंट्स, एंड वी होप दैट इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स वी कैन ट्राई टू मेक अ बेटर एंड सेफ वर्क प्लेस.
1: बहुत शुक्रिया मैम. लास्ट में क्या मैसेज आप पूछना चाहती है लिसनर्स को, खासकर यूथ्स को, क्योंकि यूथ प्रोग्राम है.
0: देखिए मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस ऐसे टॉपिक पे इनवाइट करा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोज़मर्रा के लिए, और उसको एक्सेप्ट करके अवेयरनेस क्रिएट करना है समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एंडिंग में सिर्फ आई वुड लाइक टू एंड इट विद अ लाइन दैट सेफ्टी इज़ नॉट अ चॉइस. ये हमारी चॉइस नहीं है कि हम सेफ्टी इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एज एम्प्लॉयर्स और एज एम्प्लॉय वी नीड टू शेयर एंड टेक अकाउंटेबिलिटी. हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी सेफ्टी के लिए, खासकर एम्प्लॉयर्स के एंड से भी और एम्प्लॉय के एंड से भी, क्योंकि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, काम करना, इनपुट देना, प्रोडक्टिविटी लाना, और उसके लिए अगर हम सेफ्टी को एज अ चॉइस लेके चलेंगे तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारे वो वर्क पे भी नज़र आएगा, हमारी एफिशिएंसी पे भी नज़र आएगा, और इन द लॉन्ग रन वो मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट करेगा. सो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ ट्रीट सेफ्टी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एज अ चॉइस.
1: All day for safety and health at workplaces. इस मौजू पर तफसील से बात करी थी अभी तक हमारे साथ शाजिया जायदी मैम. बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट में आपका, और एक बार आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को टाइम दिया. दुना यम्बो यम्बो स्ट्रॉन्ग लुक स्पोर्ट्स आम ची खाचन इन दिसकोला शाजिया मैडम इकना दास पा त्रिसुल लिप चुके तेंतेस त्रिसुल आंगन मजद नरसक पा यंतेस शाजिया मैम इकना रतेलुक्स दुना यम्बो यम्बो स्ट्रॉन्ग लुक्स पुसाम चे खाक्षा निंगति लस में मलसावनी का दिसको ला तेस्वी ज्ञानन चोतपिन देरा तेस्वी नेंबो आकाशवाणी करगी लिकर अफ्रो चुपत पिशर बाना चुनी प्रोग्राम पो थमातुन यूमी तु सुनानो के अंताना यहां थुक थुक देमन पो इजाजा चजबु सुय जो खुदा रसामानी फकरें
2: दस सपा इंतेस प्रोग्राम यानि निपिन शर्बा नचुमुनिफिया प्रोग्राम फ्रचुखन पे इनमें असगर अली प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन मीडिया में कंगा चेस आकाशवाणी करगी लिखना जैनो दस पो खबर उन्नी थो सुख कसता आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी नागदेशन खबर उन फ्रचुगे त्रिलीला गेर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में

0: श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरी कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Senior BJP leader Subendra Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
0: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: रंगी बिजनेस उन लस्के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलेन उन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब पिल्ले पीस कप्स मांगमो दरने अंतिस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांगयन चाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर।
3: 8700001 4242। सुनो ना।
2: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001 4242।
3: ओ 8700001 4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001 4242 पर।
4: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: او ریڈ کراس زربنہ دے چکسنا تا ادارے گوا سوسائٹی کی گاؤں نوں تے والنٹری رضا کرانا طریقہ لز بتھون یو تین نین کن کن یان تیر تخس میں می نظر نہ 1869 یان نوں تا دی ادارہ او دی سوسائٹی ول دن کن ان چوک نین کن کن اٹلی اتحادی و اسٹریلیا فوشی درمیان جنگ چی چکن ان چوک دے چنا دی ریڈ کراس سوسائٹی ول دن کن ان چوک nin kan kun ya nga ta nga bal sa chi ka volunteerism nga ta la shik thong na ka to lik ban chin phala ga red cross societies nga ta goma las ba thong yut in der gam na lokso lokso edari nga ta volunteering nga tir ga sit kar gi lis kol je nga ta du na las ba thong du men ma nga ta sdrf na red cross ri nga ta de chana thong ma che chuk nin kan kun yang red cross societies chang rin met pa ya di volunteer ri nga ta nga chuk ko de ti afat du na gar nga ta nga mushkila chi chana khong yung matung tsuk yang Red Cross si nang jungs nga ta Government of India di tsuk su relief fund di kang Red Cross si ekone nung nga ta cha thong yu ti in dari ga malsa chika nga ta kudati afad di yung si nang kang ma nga ta kang dip chana Red Cross Society under nga ta kwa rehabilitation me ming na ya kwa moaiza dik ta me ming na ya Red Cross pa ni ya nang jungs nga ta di relief nga ta thong ma cha thong yu te in kasani in kan kun nispera de ga jak se Facebook pa se Red Cross Society skor la zer bi ming na dini Akashwani Kargil historia sikhet program en nuk grak pa jinab Ahmad Hussain sa ba skyo ju skyo skyo kwa gana Facebook pa se tisik lo chuket assalamu alaikum Ahmad sahab tu spin se dini Akashwani Kargil historia skyo chas pa lao ju sering mazre ju
1: bhoot ba shukriya ji
0: Ahmad sahab sa basna lani eri kena du ti flalus bet ki Red Cross pokhorang chi in ju ya Red Cross nam dan khan in ya di Red Cross Society la sun chi des kolo chuma namakshis
1: kasa bashis mehmani jinab to Red Cross yana zanna du 1859 yanu yong khan in ma ya ko wujud ya yong khan in su cha zabana ati qabil ehtiram Henry Donan zakhan po di tajir in su yana ko de time yanu khurang ehtirin mi yot pana ko astrez zakhan ide jagyanu ko khuri business se silsile an khode an chakan chana lekin de an tihadi fauj ne darmiyan an jang song se na jang an chi song se bane ra suwa chuma to wa suwa asman thang wagaira chang me pa matlab su zinda lushayo ten chang khu matlab de ka su shin yo tulo chana kho tar jo an insaniyat ko an insaniyati jazba paida so so jo chana kho sam su ngara khu jang na ngara kar me ko ga sa ne ga sa ne lekin ni maqsad to di unki insaniyati jazba ngari insaniyati me na diya mera koi na koi sam ज्ञान में सा पोंगारे को जान बचाए बगदरे ना खुद कोशिश बसु की सु अछूर गोस कर ले छी बाकी यंग सो मरहम पट्टी बार गो ना खुरी यान में हिसाब दे अंदर एक बस पा यानी दे अनु कम से कम एक डेढ़ दिन दे अनु 40,000 मी दे अनु छी सु करा दे जंग पे
0: कस है या
1: तो दिस चीज पर बस खैन इंसानियत पे जगह छान को लोग सुयों से ध्यान हो से ना खुद ए मेमोरी ऑफ सेल्फ एरेनो दर खन किताब चीज बिसुक दें खुद जंग ही पूरा मुशाहिदा बसने तो गांव में दयानुक खुद यहाँ आज ना खुद तहरीक बसु ताकि खुद सामसुक दुनिया ते अनुक दूसरों की शाना का इंसानियत की तौरी का गा इंसान जिक चाहे को का गा साइड चीने मिंदंगी से अनुक या प्रोग्राम कोम ये से अनु या साइड ये से अनुक जंग जाना लेकिन आम बाकी न्यूट्रल में मकसद तो इनकी इंसानियत को बचाई भी
0: बिल्कुल
1: खुन खुनती मकसद तो खरंगा चुक चुन लिहाजा दी मकसद पे का खुश यानी इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी खुश तश्कील चाना दी जिनेवा ने उन कॉन्फ्रेंस धरे सुपांगती छेद पूरा चाने दे अनु खुद यू तशील तां से दिगने अल्टिक पौधी रेड क्रॉस पो तमाम मामाली के अनु हर मामाली इस रंग रंग है अनु रेड क्रॉस यानी अति इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे हैं हिंदुस्तानी बाकी दस तो हर मामाली की रंग रंग है जैसे कि इस्लामी दिनदानी रेड क्रॉस ही दे दिनदावला रेड क्रिसन जर इन चिकों स्थान से चेज मत अनु हिलाल अहमर जबाद यहाँ करना यानी दस तो दी मशीन पुद्ध प्रोग्राम बहुत जस्तु दी मूवमेंट से शुरू बसु तहरीक शुरू बसें
0: चुरा
1: इंसानियत जज्बाओ खुरे आता हमेशा दुख पर घोषित दे रहे हैं जमन खुद मकसद खोए दे अनुक सिर्फ सीधा मकसद सात मकसद जो दे सात मकसद पुखुरे दी रेड क्रॉस एन ग्लास बजा दे उन्होंने चिक चिक पॉइंट चुरा इंसानियत दूसरा गैर जानबदारी तीसरा ना तरफदारी चौथा आजाद रजाकाराना खिदमत अफाकियत दोनों इतिहाद तीन यहाँ रेड क्रॉस ही मेन प्रिंसिपल में मकसद दी जोन पे कलर्स बजा तो जैसे होता दरे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अंदर पे अनुक तमाम स्टेट है अनुक रियासत गांव में अनुक रेड क्रॉस की ब्रांच होते हैं दे अंदर पे अनुक डिस्ट्रिक्ट यानी हर डिस्ट्रिक्ट है अनुक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जरे दे अनु होते हैं गाती करगिल अनुक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी गाती करगिल जरे गाती दे अनु दी कमेटी होती है दे चेयरमैन पोंगती डीसी साहब

0: वाइस प्रेसिडेंट पोंगा थी एसपी साहब इंजू और देखना सेक्रेटरी ना थी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब मजू बाकी ट्रेजरर ना थी सीएमओ साहब और उसके अलावा बाकी यंग गा ngati di kargilan utsam se am miot volunteer agar so bhai den ka tyo ndrik volunteer las badya ne omi malab den ko yan shur ka tyo ndrik denu malab ko den de den las be mauka faram baja
1: beshak
0: aur uske alawa dyanuk member ek taraf se pura ngati society ko randi member hi nena
1: tas
0: chi kan enzer bana jab tak jab ki ngata tasbat ngata sunse hota na sukun ne ka red cross ticket jat pin 5 rupaye 2 rupaye de phun kana
1: beshak
0: iska matlab खोदे रेड क्रॉस मेंबर यूनियन
1: बेशक जी बेशक
0: कुछ कंट्रीब्यूशन बात है दक्षा मेरा जना पूरा मुलाजिम यहाँ हर साल यानो एक बार मार्च महीने का या अप्रैल महीने का गवर्नमेंट ऑर्डर छजिन खोज कंट्रीब्यूशन दाचिन रेड क्रॉस ला यानी वॉलंटरी डी कंट्रीब्यूशन इन यहाँ दिए बन चिया दर बन दूसरी सिर्फ और सिर्फ रजाकारी भैया यहाँ चंक कोई मकसद मतलब चीज भैया मैं चंद दूसरों ले दिए रेड क्रॉस को हुजूर हैं उसे दसम मतलब इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का इंडियन रेड क्रॉस कमेटी फिर इसके बाद जा करके आती यानी करगिल अनु रेड क्रॉस कमेटी दूसरों तश्कीसों से यो से मिल जाता
1: है बेशक मखसूस जमा समान अर्द मोमन जो टिंकिंग अति कैसे हिंदुस्तान है उन्हों दरिंग अतः म्यूली थोरिका अब्दुल बत्सोक्स ला इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दानी लोग बांची सों सिंध सजू छाना दिया अतं मेमं सगी कंट्रीब्यूशन सगी योगदान सगी लग लेन देन अतं दिया यो तिन कन लग लेन पु चेज बना अते से अगर चुको अतं कबल वर्दी गुड ना दिया नुक सब वो मिल ला थाजू दिया अते से वॉलेंटरी लाज बांग अतं थों यो तिन कन छाना अहमद साहब इस मन रेमो मोल यो तिन किंग अतं इतिहासित कर गिलों दी रेड क्रॉस सोसाइटी अनु को चेयरमैन पु अतं डीसी साहब या दिया नुक अतं वाइस चेयरमैन अतं एसपी साहब या दुन सगी लखतुतिका रेड क्रॉस सोसाइटी नांगजोंग लाज बेन यो तिन चुक अहमद साहब ता दूटी प्रोडक्ट्स बेट की नम ना दे से यरंग दी रेड क्रॉस सोसाइटी ना बोला तुते यो जो नम यरे दी रेड क्रॉस सोसाइटी जो इन बस खनिन यंगा चोक जोक शिका दे इन तेलास बात
0: रेड क्रॉस सोसाइटी नो को गा जी हादी साहब जें ची को डीसी ऑफिस ला मतलब डीसी ऑफिस डीसी चेयरमैन छाना को डीसी साहब से चिक ची रेड क्रॉस दे लास पे जिम्मेदारी ता मत यारा
1: बख्शी
0: छाना मुझे हादी काफी दी बारे शोक हो चुके ना शोक इन जो तो पा खोज कोशिश बस की वॉलंटियर सक एक्टिवेट भी वॉलंटियर यहाँ ध्यान उचुक पे छाना 2013-14 चाहना जो सोचे भाई वॉलंटियर लस का तो बने रही सोच सोच जर बना अब इंसान ही रहा शोक ही नहीं रहा इंसान ही ना मिसाल दिया सोचने छाना वहाँ सांग दिया ज्वाइन बसे वहाँ से बिल्कुल बेहतरीन दुख ये गातस वॉलंटियर ची बना गाती का दंबा दापो ची का सुधर दिशा ने गाता दिया नुक गातस मदद भी गाती जगह ख्वाहिश पो यो दिन दबासे सार बसे वहाँ से ज्वाइन बखानी तो उसके बाद जा शिंगास तो हर गा मलसे का या मेघ दूसना या मलसा चिका दरेंग आती हूँ मत बिना रंग आती महाराम ही देंदा हूँ मत अरबई देंदा हूँ दया नूरेश क्लास 500 से मेडिकल पान लेता हूँ वॉलेंटियर को शोध नगा चाहिए हूँ दर्शा नहीं आती सीमो साहब इसे करना अर्डर फिर से दी दी क्या मुने खेलता हूँ जरे दो ने नूंगा चाह सहसारी लेने चियोंस
1: यों
0: सर जब पोना दया नूची शिक्षिक नजा महसूस हो यो चुगरा यानी फर्स्ट रेटिंग आता माना बेहतरीन जरूरत आम दो लाख दया नुक प्रोग्राम चार वर्ष तक जरें चियो तो ना दया नुक मती इस नल्ला देता ना डीसी साहब युतपिन अति शायद राजू साहब की तो युतपिन खोज लेना ले पास लेना चिक चिक करगिलों ने मिंदा चिक चिया ना खास टेटी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग चेतांग ने
1: दयानु
0: का नॉमिनेट बस होतु छाना खोज ना अंगाचा श्रीनगर ला दयानु आईसीआरसी तरफ ना मैडम फेलिसिटी हो सोचु चाखा खोज एक हफ्ते अच्छा ट्रेनिंग दा देना ट्रेनिंग पो कंप्लीट बस दिन दयो सर ये अपना 2014 अनुक गाची कन भैसे ते टेस्ट सो ला यारा इंडियन रेड क्रॉस ही पूरा टीम यो से नगा ले डिग्री कॉलेज का गाना लेना रहमान साहब जिन चोत गाचा इसका ले ट्रेनिंग ता मजे
1: ये
0: खून दुन ला यारा गाचा पूरा ट्रेनिंग ता चो गाचा पूरा 3 दिन गाचा मना मोत की 10 बजे का ना भितो गई 6-7 बजे सुपादे का स्कूली फुरसक दोन सा पूरा याना देने एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बाजू से ट्रेनिंग ता चो तो उसके बाद गाचा उसने अनुगति बाकी वॉलंटियर सा सखजोम से आती हर जगह ने वॉलंटियर या ना रजिस्ट्रेशन दे रही हो तो रजिस्ट्रेशन आप द्रास साइड से आयो चिकन साइड से आयो चरगोल और गोल में नहीं दी साइड पर संघ वगैरह हर जगह ना अति वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन योद का नहीं दोन ला आइडेंटिटी कार्ड से इश्यू बात अति वाइस चेयरमैन एसपी साहब की तरफ
1: मखसूस का
0: छा ना डी एस एफ का और जती जरूरत ही चीज होने का जरूरत गा जगह चीज जरूरत चंद्र की जगह ने का अति वॉलंटियर लस बेनी से कम से कम 3-4 साल देर गया अपना काफी एक्टिवेट होगा नहीं
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: तो तना गाती डीसी साहब बहुत बेहतरीन बिजी सोमा खून खुन बाकी ला सुनियन बिजी लुस पाना दयानु मतलब मजीद पेशरफ ची काफी खास दिन थी माउस तो उसके बाद गचस देन कुछ बच गए सेक्रेटरी हो चीनी रहा ऑनरेरी सेक्रेटरी दो फिर चीचिंग नजर कुछ बस पार किया एहसान साहब रिटायर बी डी ओ साहब खो सेक्रेटरी अपॉइंट बस से

0: छाने दीजा पे का खोज चीन दीजा पे का गाते इरादा बोस कि गाते यूं मिसाल पहनो कि मलम गारे गचाम से गारे नोरो लाशी बोग दे तुम गाते छो से आनो गाते मैं सभी ले रखा दिगे नेल तुम गारे रियाला लाशी बोग खेला दरे संबत हो दरे आता यो जुदे छाने दिया जो सें जू गारी यानी गुजारिश पो गाते पब्लिक आ गाते आवाम आ बिल खुसूस नौजवान उनला चाहे हुसैन चाहे बोमैन यानी रेड क्रॉस सी वॉलंटियर धन मी यानी शोक उम्र गोशैन कोशिश बार गोशैन ताकि बाहर ले चंग जरूरत छ में रंग यूल पे रंग महल रंग ना पे मदद बांगे चाहिए दी रेड क्रॉस पे नो अगर का तो सुस का तो ज्वाइन बन रही तो लिहाजा दी शोक को जज्बात ऊपर घोषा इनके घरे मदद भोगिया चिया यानी घरे दी शोक जर खान ची गाता लूस पर घोषा तो बाकी आम गाता दी रेड क्रॉस इन शाला अच्छा उम्मीद हो दू जब बजा को ले गाता दू तरीके से सिस्टम चाहे युग से न्यू से नफल पे कैसा तफा से चाहिए तस्वा से न्यू माना गाता दे ऐसा पे गाता अलस भाई गाता सा तौफीक से चाहिए तो जी तो उल्लास में नंगा तां सागे जोर जोर बचा चिया जर बना वालेंटियर यानी हर चीज़ है उजरत है जब नंगा तां दुख से नंगा दें जजमेंट इंसान है ज़िंदगी है नुक कार खेर सिंग नंगा तां अगर का तो नंगा तां मिट पिर जब नंगा तां चीज़ का तो मैं तीजा ती चीज़ लिहाजा दी फिर नंगा तां दियो बेहतरीन रास्ते दो लंच दुख तो हमारी तरफ ना तमाम गति पब्लिक आदि गुजारी इनकी रेड क्रॉस पर शेष पर गुशा इंच ना रेड क्रॉस पर चिन सुख गति चिन सुख और रेड क्रॉस के कंट्रीब्यूशन चिन सुख तंग अंदर यंग दो समझ दियो अरे लिल्ला अरे पीसा भी लिल्ला अरे तन दी चिक ची मदद लंग अरे यूते नितास तो दिया इन जो हरी गुजारिश को कि ने अनुसार दो सब सलूक बजा
1: बख्शिस नाम से मन हृदय में मौलवी पिंकी गति के सिद्ध करगिल नाम सगस दी रेड क्रॉस सोसाइटी ला गला जोस ते का रॉक्स बसे रेड क्रॉस सोसाइटी को रंग चीन से जर चेस बिस्कुट ला दु यंग आता शेस पाऊ खखचिन ज खानी एरी गला जलता ने बुरी कने इज लेने की यंग मिजा को ने नु गति मि मां सुने संग या दी रेड क्रॉस सोसाइटी ने बो जुड़ाई सों से या यंतन सो वॉलंटियर तुम ला यंग से गला जोस ते का दु बसन बेहतरीन अंदाज से अंदुक गति दिर गस्तित पे मिना इंसानियत मिना या यंते से लज बस राजा कराना गति दी कोम पुला यंते कंट्रीब्यूशन जी तामिंग गति हृदय मजा लजुक पिका या रंग यार स्पची गेरी रिन तोशन वक्स एंड वक्स पिन से दिन आकाशवाणी करगिल स्टूडिया स्क्यूचर्स पर लवजु श्री मोजरी जी अस्सलाम वालेकुम
0: अस्सलाम वालेकुम
1: दर इस अपने इंटेस टिस्यू गर्न अभिनेत पिन दे टिस्यू ने बो दिन से के प्रोग्राम में वक्स पचोम्स سکت پروگرامی وقت بچوم سیون میجا و نیانتان سپایان تکچه دیمان پومچان ساغا ایزین شده وزد یجو خدا نرسمونی فقریانو

0: taking sunny fan at this storage and extra energy.
1: Kasa sir, neither renewable energy agar ngate install katabana hajumati ladakh agar install katabana dius ngati pura ladakh energy demand po pura chacha ina anti kana ngati energy gospo kasa sir dis korle chacha
0: agar kato ngate di solar energy install bas install large scale ka bachin ek small scale chike men jese ki ngate particular use se fila do tola men ek large scale chike kato bas large scale chike bas odan hybrid system kato tang na और ऊपर से स्टोरेज भी फिले बैटरी संग इंस्टॉल का तो बना लद्दाख फिले रिलायबल छचिन अगर दो का तो मावाना रिलायबल छचमिन सिर्फ अगर का तो मतलब सोलर पावर प्लस से इंस्टॉल वसे बैटरीज अगर का तो मजाक पर डायरेक्ट का तो जाग में का तो मतलब उधर के रिलायबल दुख पहचान क्योंकि छानी टाइम पे कहाँ था यंग जगह चीने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड बार हुस अगर का तो स्टोरेज शिफ्ला इंतजाम का तो बने बैटरीज का तो जाग ना फिर उसके बाद नाते कुछ हद तक कंधन दबाएंगे चीन कावर छचिन अब तो लद्दाख और आगे ट्रांसमिशन बांगे चीन ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइड
1: अगर दिया इंसिपा सर नाते लद्दाख जो गोस्प पूरा छचा तीन सिपा अगर नाते नाम सांग बैटरी का तो इंस्टॉल मन है जो
0: अगर बैटरी इंस्टॉल वैसे अगर स्टोरेज का तो बांगे ना दो सिस्टमेटिकली अगर का तो बाग का तो शेष ना दो रिलायबल बांग इंचिन
1: कस सर नहीं अगर गाती लदा का डिमांड पूरा सोच सकता हूँ बाहर ला सप्लाई बांग इंचिन अमें
0: बाहर ला सप्लाई बांग इंचिन ऑलरेडी गाती लदा खुरियां दो चोस प्रोजेक्ट ची डूले नोट दे
1: कस
0: दो चोस प्रोजेक्ट ची के डूले नोट दे दो चंगथांग गाती चंगथांग ऑलरेडी दो मेंशन बस हो दे
1: कस
0: चंगथांग दो चोस सोलर ए पावर प्लांट ची तांचिन सुख जिसमें विंड विंड टर्बाइन अंग यंबंग यंबो तांचिन सो अल्टरनेट ला लेकिन उधर क्या पुनः ट्रांसमिशन लाइन लाइन पुखर चिन सुगर हरियाणा हिमाचल ऑलरेडी तो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन प्लानिंग चे ऑलरेडी दान है शायद एलएचडीसी लेन है वो तो स्पेरिक सोन से देखे प्रोजेक्ट पे कला से डूले नो चे
1: कसा सर नी दिस ऑफ प्रोजेक्ट उन हाजु इंस्टॉल सों सर गैप नंगाती इनवर इकोसिस्टम यंग चंग फरक चों ची ना दिस कॉलेज एस फेस पे बसे मालना
0: इकोसिस्टम यंग फरक यों चीन थोड़ा कुछ हद तक जैसे कि नतस नल जस कि मतलब ग्राजिंग लेने का प्रॉब्लम छचिन जरे एक तो दो सौ और ऊपर से मतलब ऑलरेडी गतंग दो तो दिन के वल्नरेबल एरिया की ने अगर का तो गति ग्राजिंग लैंड अगर का तो खत्म छाना का तो कोई कुछ हद तक हैबिटेट पुखरन इकोसिस्टम पुखरन खत्म छे छान छचिन और अगर का तो दो तो इकोसिस्टम के यहां बाकी फर्क दो तो लान छचिन कि बोलिए एक जियो थर्मल अगर का तो इंस्टॉल बना दो इंस्टॉलेशन में 35 दिन तक शायद दो तो शियों मत कि मतलब उधर सब पे एग्रीकल्चर लैंड सगाम खत्म छचिन देते ना एग्रीकल्चर बा नेंचा में और तो छचिन दुना थोड़ा तो बहुत चेंजेस यों छिन है बस
1: कस सर नियर दियां जियो थर्मल चीज इस पर जियो थर्मल एनर्जी को छिन गाओ गाती लदा का पॉसिबल यो तमे दिस को ला चीज
0: ना जियो थर्मल पे ना जियो मींस गाती आत को सो
1: कस
0: आत सरफेस गाती आत खुरी
1: गाती
0: आत जमीन भी हीट पे यूज बस गाते एनर्जी जनरेट बा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बा जर ना तो ओदो लगाते जर्चिन जियो थर्मल ओदो गचो बचिन जर बना जैसे कि गाती दो चोर जगह चीज बचिन जहां गाती हॉट स्प्रिंग्स भी है ना चुमिक में जाते चुमिक चंते चुमिक सोरा
1: चुरन
0: ओए चुरन चुरन जर्दे ओए और तो लेट चुरन बीन से जगह ने का ज्यादा पॉसिबल छ चिन दो जियो थर्मल को और ना ची बचिन अप टू 600 मीटर सब पे योग ब्रुचिन और दे छी कलप चिन खलखन छी के और दे छु एक्सट्रैक्ट बसे गेल लगे हो चिन छु एक्सट्रैक्ट बसे गेल लगे हो चिन देखना और वेपराइजेशन बचिन एक छोट टैंक छ तो शुरू चिन और ना वेपराइजेशन बचिन लेकिन और ना छी बीन छिन स्टीम बीन छिन
1: शुल लंग स्पीक और
0: दे लंग स्पीक ने सों से लंग स्पास छि बचिन टरबाइन पु स्कोर्चिन और टरबाइन पु स्कोर्चिन देखना और दो जनरेटर ने कनेक्ट हो छिन लेकिन आगे आते से ग्रिड का प्रोवाइड बचिन और स्टीम के लन छिन असली लेकिन आ दे से नंगो से खलखने छु और दो एक्सट्रैक्ट बस क्यों से आते से वेपर फॉर्म में स्टीम बीन छिन और दो इन जियो थर्मल और लद्दाख में ऑलरेडी आते दरे फुगाल दान नो दे फुगाल दान नो अंडर प्रोसेस और शायद अभी दरन जनवरी एंडिंग च सख पे 450 फुगा चंग था और दे 450 मीटर तक शायद ब्रूस और एक्सपेक्टेड में तो ये शायद 1000 सख पे 1000 मीटर सख पे एक्सपेक्टेड बस होत के उधर गिर गया पर इंस्टॉलेशन चचिन जियो थर्मल दी फुगा चोनत कंफर्म आती इंडिया फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्लांट छ जो स्मॉल स्केल के दरे मतलब ट्रायल ही फिले इन सुख अगर का तो इन केस जो सक्सेसफुल का तो छाना आता

टापू खत्म। भसीन मगरबी बंगाली गोमा भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ती नलिनमी तकरीब असकिया कोलकाते ब्रिगेड परेड ग्राउंड पियानो को मलियां खोचाइन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नौशमय मरकजी वजीर अमित शाह बीजेपी सदर नितिन नबीन दोना बीजेपी घोयोतिर गलखा गुन घंगमी वजीर आला उन सगस दी नस्कल भी तकरीब पियानो को खक अलिन चाइन जरे और सिर से डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज काचो ना सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस द्रास इश्तियाक काचो सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्रास विशाल अत्री ने एम्बोज उजिले जिक्सखोर बसे गाड़ी यूनिट गलम पेका छायों पेस्कोर ला स्थलुक्स बस दिवस ला बी आर ए खखुरुन ना द्रास पुलिस लस्मी सगांग अशुक से अयुत पेन गवर्न डीएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने एसओ ट्रैफिक सोनामा रगी संग अखक लेंस दियाबरिया और गलम पेका छो गाड़ी यून ना छोंगसे गाड़ी यून सगडुल बी फ्योक्स पुलांग स्थलुक्स बसे जोजिले गलम पेका लोकसो मलसाउन सागे कयत खन खाउन सांग फियक पिमिंग ना तालुक्स पांग बसेन देर गपना डिप्टी कमिश्नर ना सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दोना सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संका मीना मरागी चेक पोस्ट पे का खिलेर संदक ना एसुहु ले आतुनिस को लंग अलता लुक्स बस खोजां दी मलसाउ लेगी ना अर्देमो बसर चुआर गो सुगजरें दियाना मलसाउ खुरी का ना लदाख ला जुक्स पर जरे एसर बसों दियाना चुखला दी जुक्से मलसाउ निस्का मिंदो गो नुस्पो से दुखचन अर चुआर गो सुगजरें खास कोन तांसेन वजीर आजम नरेंद्र मोदी मई इल्जे चुक्शी का गुजरात ही सोमनाथ मंदिर लच हचाइन सनाल उस पहुंची ना और गुबग्याना गपचू नची के अनुक मंदिर पूर्व चौ सर गया अपना भारत ही गोमा सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद इलाके गोजुक सो सर गया अपना लो और धुंचू ना गाव घर के सोमी वक्त पे का मोदी दर छचा इंजर है ऐसे रे इन वजीर आजम इस दरिंग अजगस्त्री ती जगजर रिसाला चिगियां अलजा खची की नालजों उस खोरांगा सोमनाथ नथुते योतखन खकचन तकरीब निसे अनुक खकलेन मिमी ना वक्त होप से इंजर है ऐसे set दियो बसा दुनला दीची की लोए गोसुक पुखुरी का वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर बयानो खक लेंस गाव ग्रलसिरपु मंदिर पे का बसखन गोसुगी हमले लोस्तोंचिक घर या छाव नजम से मलियन क्यों सेन दिफाई चलचल यरगासी तंजीम डीआरडीओ ने भारतीय फिजाई अस्थेबा थक सुख पार तखना बघन सोचे लक्ष्य तारे घुमा आजमाइशी तजुर्बा लक्ष्य संयम्बो मलियन खोसेन दी तजुर्बा उड़ीसे साहिल न छुंचिक थकरी बासो वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस दी घुमा आजमाइश फुर्चस पेकर डीआरडीओ भारत लोटमक डीसीपीपी दोना सुनात पुला मुबारक बात तांस खोस दी लक्ष्य पोस गैस्ट्रीत खुरी अनुक और चोस पे दिफाई लक्ष्याओं ने यरगा सिथां प्यांग खक्चन लक्षेप शिगिन जरेंग असर सेत पुर्गी खबरनलाई अंतस आकाशवाणी करगिल के नसना बेंचिगे आकाशवाणी दिरिंग खोरांगा मलियां योंस भी लोर गुपचुई गंगर्ग्या सोमी वक्स पेका अजग्या स्ट्रीट इर ग्यालसा मैराथन चिगे ग्रल सिर बस निमर किलोमीटर फेनांग सोमी दी मैराथन पो आकाशवाणी भवन न गोजुक सो दोना कृषि भवन रेल भवन यंग रिजर्व बैंक नवनी लंपुस चेंजिक आकाशवाणी भवन ला थमा थोनीन गवैनुक आकाशवाणी दूरदर्शन दुना प्रसार भारतीय लस्खा पानंग यम्बो यम्बो खोंगे जंजो सुनसगे संग खकलेंस दिवसला प्रसार भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुरु देवपति न आकाशवाणी डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन अशुक से इक्योत्पिन अमरीकी छोलन माइस कोरला विफाकी अदालत चिगे सदर डोनाल्ड ट्रम्प समा फीसद अस्ट्री मियोली महसूलात पु गैर कानूनी इंजर अजर सेत न्यूयॉर्क मियोली छोलन कोरला अदालत जज सुमी पेनल पुस दी छोर पुथा मसों गवेनु खोंगिस छोंचे छोलेनी एदारा उनी छोक्सना अदालत पुस दी महसूलात पुला चैलेंज बसर गबना दी टर्छत पु धुनला योसेन दिवसांदोलना सुप्रीम कोर्ट इछोसना ननिंग मालियन ख्योंसखन म्यूली महसूलात पेकास गस्तान सरगपना दिसोमा महसूलात उन ख्योंसखन इन मिंजरे सरसेत देरगपना अमरीकी इंतजामियस जुलाई जेंगी छुट्टाज भी सुखपा महसूली थेबार चूर तनपो जक पिमीना यंग कानून चिक कोल भी फ्रालुस बस गाउन सनालोस्तों चिक नर गुप्यनार दुनचुन अजभी छोलेनी एक पे दुनला अर्ग्याना इन छुट्टाकनीस पुइंदरे सरबसों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प इस अमरीका ने यूरोपीय यूनियन देस्पेरा और नॉर्थन पर छह महीने ची गिर जरजर से गवेनो ईरान इस न्यूक्लियाई लक्ष्य ला लक्ष्य बा मी एंचा शोक सोशल मीडिया पोस्टिंग सदर

0: rangi businessun laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya fayuli thokikain akashwani stanchain customer unsa pilepis cups mangmo darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना,
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान।

0: मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाइन। हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन से लोगों तक चुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुंचेगा।
1: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
0: आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुल्क भर में आकाशवाणी के 232 मराकज पर मुनक्किद किए जाएंगे।
2: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़श्ता माली साल में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है, जबकि बैंक के असासों में भी मजीद बेहतरी आई है। इस बारे में बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ एक खसूसी बातचीत के दौरान कहा,
4: पिछले साल हमने जो मुश्किलात देखी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो उसके मद्देनजर अगर आप हमारे प्रॉफिट को या हमारे बिजनेस ग्रोथ को देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही रिमार्केबल है। आप फ्लड्स को ले लें, जो हाईवे बंद था, इन सभी चीजों की वजह से बिजनेस काफी अफेक्टेड था। तो हमने इसी वजह से कुछ अपने स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाए थे। हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया, MSME पे फोकस किया लास्ट क्वार्टर में, और इसके साथ में एक बिजनेस मिक्स हमने किया रेस्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे ब्रांचेस हैं। तो इसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा रहा, इंडस्ट्री से बेटर डिपॉजिट ग्रोथ भी रहा, इंडस्ट्री से बेटर एडवांसेस ग्रोथ भी रहा, और करीब करीब इंडस्ट्री से मैचिंग हमारा कासा का भी ग्रोथ रहा। तो इन सभी फैक्टर्स को अगर हम एक साथ देखें तो ये साल रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुआ है इन स्पाइट ऑफ इतना सारा डिफिकल्टीज रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में।
0: शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा में आज से थर्नोस्टिक्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन ए वे फॉरवर्ड के मौजू पर दो रोजा CME का आगाज हुआ। इस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान माहरीन मुख्तलिफ अमराज की तशखीस और इलाज में न्यूक्लियर मेडिसिन की अहमियत उजागर करेंगे। इस बारे में सिकिम्स के न्यूक्लियर मेडिसिन शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉ तनवीर अहमद राथर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
5: इसका मकसद ये है कि जो हम इस वक्त कुछ टेस्ट या कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ थेरेपीज जो हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में करने का इरादा है, अपने आप को हम एड्रेस कर ले कि इसका फायदा क्या है, उसके टेक्निक्स क्या है। इसलिए हमने मुल्क के बेशतर बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूट से लाइक AIIMS, PGI, गसलोक हॉस्पिटल, RMC से एक्सपर्ट्स को लाया जिनको अब ये एक्सपीरियंस थी कि ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और ये स्कैनिंग कैसे करते हैं। हमने क्योंकि हमारा इरादा है आगे जाके हम भी ये कर लेंगे, तो हमने चाहा कि इस पे एक CME किया जाए ताकि अपने आप को एब्रेस्ट किया जाए।
0: साहित्य एकेडमी की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में कश्मीर की मारूफ शायरा हबा खातून से मुतालिक एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ सईद दरख्शान रापी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि हबा खातून ने अपनी शायरी में सिर्फ अपने दिल की ही बात नहीं कही है बल्कि उन्होंने वादी के खवातीन तबके की कुव्वत का भी वाज ऐलान किया है।
6: हबा खातून की हयात जिंदगी पे आज सब बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि हम अपने जो हमारे कश्मीरी जुबान के अदीब हैं उनको याद करें और जो उन्होंने रोल अदा किया है, खासकर निस्वानियत जो आवाज थी हबा खातून की, वो आज नए जनरेशन को बोली जाए, बताई जाए, उनके सिलेबस में शामिल हो ताकि हम ये लेगेसी आगे बढ़ाएं। तभी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को अपने जो रूट्स हैं, जैसे खासकर हमारी हबा खातून, लला आरिफ, ये हमारे ऐसे लीजेंड हैं, अगर हमारी आज की जनरेशन इससे नावाकिफ रही तो बहुत नुकसान होगा।
0: अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर गजहरा अजहर ने कहा,
7: हमारा ये मकसद था कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको पता चल जाए कि ये पामपुर की सरजमीन जो है ये कोई आम सरजमीन नहीं,

ने अलका एग्निक और साथियों को सुना। नामे निगार थे समीर और मौसीकार थे हिमेश रेशमिया। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं बरसात फिल्म से, जिसे गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णा मूर्ति ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है।

अभी चोरी चोरी छुपके छुपके फिल्म में आपने जसपिंदर नरूला और साथियों को सुना। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा था अन्नू मलिक ने। लीजिए प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनते हैं इश्क फिल्म से, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार ने। शब्बीर अहमद के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है हिमेश।

0: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम

0: हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू

0: हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। सीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत

0: पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारी

0: सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिद एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: कल सुबह सरकार की हलफ बरदारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेर इक़्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविन्द्र जयंती के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से

पिछले कुछ दिनों में बहुत सी संस्थाओं ने जो कि कारगिल में हैं और कुछ संस्थाएं जो लेह में हैं, उन्होंने एक भ्रामक प्रचार फैलाया है कि पावर डिपार्टमेंट का निजीकरण प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस बात का मैं सख्त शब्दों में खंडन करता हूं और मुझे अफसोस है कि ये सारी संस्थाएं जो आए दिन हमसे हर रोज मिलती हैं, हमसे बिना चर्चा किए नाम से सवाल पूछे क्लेरिफिकेशन लिए इस तरह का भ्रम लोगों में फैला रहे हैं जो कि सही नहीं है। कल मेरी जो पावर डिपार्टमेंट की यूनियन है यहाँ पे, उन सबों लोगों के साथ विस्तार में चर्चा हुई, चीफ इंजीनियर साहब के साथ चर्चा हुई और उनको हमने बड़े खुले माहौल में बताया कि जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं उसका बेस क्या है। सबसे पहले जो पावर डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं उनको ये अवगत है कि हर राज्य को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत एक पावर कॉरपोरेशन बनानी होती है। पावर कॉरपोरेशन बनाने के दो तरीके हैं कि एक तो या हम खुद की ही कॉरपोरेशन बना लें, जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि कई केंद्रीय कॉरपोरेशंस जो कि लद्दाख के अंदर ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिनके पास पैसे हैं, जैसे कि पावर ग्रिड है या REC PTCL है या NHPC है, उनके साथ मिल करके एक कॉरपोरेशन का गठन किया जाए। तो उसके मुतालिक एक इनिशियल शुरुआती चर्चा हमने REC PTCL के साथ करी कि क्या हम इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मिलकर हम करें तो उसका फायदा क्या है और अपने आप बनाने में क्या फायदा है, ये दोनों चीजों पे भी खुलासा मैं कर देता हूँ। केंद्र सरकार की कॉरपोरेशन महारत्ना कंपनी है REC, उसकी एक संस्था है REC PTCL। इसी तरह से जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है वो भी महारत्ना कंपनी है। अगर इनके संग हम कोई करार करते हैं कि आधे पैसे आप लगाएं और बाकी हमारे जो हमको पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, पावर विभाग के पास ऑलरेडी जितने एसेट्स हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, सबस्टेशन हैं, जो सोलर की हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, हाइड्रो के इंस्टॉलेशन हैं, वो सबका पहले तो एसेट एक हम मोनेटाइजेशन करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। जितना ये सारी हमारी बनी, मतलब है कि बिना खुद का पैसा लगाए हम किसी भी केंद्रीय कॉरपोरेशन से लेवरेज कर सकते हैं कि उतना पैसा उसके अंदर डालें। दूसरी चीज है, कॉरपोरेशन बनने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप बिजली खरीद कहाँ से रहे हैं, किस रेट पे खरीद रहे हैं। एक पावर एक्सचेंज बनी हुई है, पावर एक्सचेंज के में आप स्पॉट मार्केट जो होती है उसमें तो आपको 2-3 रुपए पे भी बिजली पर यूनिट मिल जाती है। आज की डेट में हम जम्मू कश्मीर से 10 रुपए पर यूनिट पे बिजली खरीद रहे हैं। तो ये क्या लद्दाख के कस्टमर्स के लिए सही है या लद्दाख की इकोनॉमी के लिए सही है कि हम महंगे दर पे, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में कहीं भी किसी और राज्य में इतनी महंगी बिजली की खरीद नहीं होती है। इसके अलावा मैंने सभी इम्प्लॉइज को आश्वासन दिया कि मान लीजिए इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले उस सबके सबों के साथ चर्चा करके होगी। देखिए, हम फितरत से और पूरे एक्सपीरियंस से, और अब तक तो लोग हमको सबको जानते हैं, ऐसी बात तो जानते नहीं है कि सबके साथ डायलॉग करके, समन्वय करके डेमोक्रेटिक तरीके से चलने वाले लोग हैं। तो उसमें अगर कोई ऐसा भ्रम फैला दे कि हम बिना किसी से बात किए कि आगे बढ़ जाएंगे, तो ये तो अजीब सा एक माहौल यहाँ पैदा करने वाली बात हो गई है। मैंने सभी इम्प्लॉइज को आश्वासन दिया कि मान लीजिए कॉरपोरेशन बनती है, सबसे पहले आप सबों को बताया जाएगा उसका फायदा क्या है, आपको ऑनबोर्ड किया जाएगा। दूसरा, जो सरकारी मुलाजिम आज की डेट के अंदर हैं वो सरकारी ही मुलाजिम रहेंगे और वो डीम्ड डेपुटेशन पे होंगे कॉरपोरेशन, तनख्वाह हम ही देंगे, पेंशन हम ही भरेंगे उनकी। हाँ, नए मुलाजिम मान लीजिए भर्ती होंगे जिसमें 90% लोकल होंगे, वो कॉरपोरेशन के मुलाजिम होंगे अगर ऐसी कॉरपोरेशन गठित की जाती है। तो ये कि लद्दाख के अंदर ये जो एक ट्रेंड है कि किसी अफवाह, जो कि बेबुनियाद अफवाह है, उसको पकड़ करके इतनी बड़ी बात बना देते हैं, जैसे प्रशासन पता नहीं किस रास्ते पे चल पड़ा है कि निजीकरण करने जा रहा है बिजली का। ये थोड़ा सोचना चाहिए, सब लोग जो तजुर्बेकार लोग हैं, सीनियर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह का भ्रम फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम ऐसी कोई बात हो, किसी के मन में संशय हो, डाउट हो, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, मेरे पास तो कोई भी साधन